0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे। यहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से बात कर उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। कल सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेता प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और जनधन संबंधों जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमत हुए। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। संशोधित निर्णय के अंतर्गत 15 अगस्त तक पिंक टिकट जारी किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब तक कुल 23 पदक हो गए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது சமஸ்கிருத மொழி செய்திகள்.
1: இயம் ஆகாஷவாணி. சம்பிரதி வார்த்தாக ஸ்ரூயந்தாம் பிரவாச்சக புனித திரிபாடி. अथ वार्ताः. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य एकदिवसीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक यात्रायां भविष्यति. आंध्र प्रदेशे प्रधानमंत्री भोगापुरम इत्यत्र अल्लूरी सीताराम राजु अंतरराष्ट्रीय विमानस्थानकस्य उद्घाटनं करिष्यति. सार्वजनिक निज सहभागिता प्रारूपस्यांतर्गतं षट्शत

नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तन्वी के साथ आज मैं हूं नवीन सक्सेना।

0: अगस्त का पहला दिन और ये दिन दस्तक देने को तैयार है मानसून जो पूरे रंग में नजर आ रहा है। और तन्वी जानते हैं इस गाने की खासियत क्या है। एक जमाने में विविध भारती पे ये गाना हर महीने की पहली तारीख को चलाया करते थे और वो इसलिए कि वो दिन थे जब पहली तारीख को तनख्वाह ठीक आपके अकाउंट में आ जाती थी, नोट आपके हाथ में होते थे। लेकिन अब वो दिन गए क्योंकि अब बैंक आपके हाथ में है, सब कुछ आपके फोन में है, पर स्टिल ये गाना आज भी उतना ही खूबसूरत है।
1: Absolutely, such a wonderful song. And yes, today is 1st of August, the 8th month of 2026. Well, where did the 7 months go, Naveen?
0: 7 महीने चले गए और कैसे गए नहीं पता चला। लेकिन अब ये बचे हुए जो 5 महीने हैं ना, उनको नहीं जाने दीजिएगा और कुछ ना कुछ ऐसा कीजिएगा कि आपको लगे कि 2026 वाला साल सारी जिंदगी आपको याद रखे।
1: True, today is Saturday, a very happy Saturday, and the weekend begins with Saturday, so maybe watch a movie, just like the song says. Meet your old friends, go out for dinner, make amazing plans, try and utilize the best of each and every moment of this day, this month, and this year. And with this, let's just tell you that this is our news magazine program, Aaj Savere, and we have a lot in store for all of you till 8 a.m. So be with us and enjoy everything.
0: तो अगले आधे घंटे मेरे यानी नवीन और तन्वी के साथ बिताइए, अब फिर देखिए पूरा दिन हम आपका कैसे बना देते हैं। बहरहाल नजर अब तक की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माँ के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था।
2: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
1: Social media company Meta's global team, which has been summoned by the center after it restricted Prime Minister Narendra Modi's Facebook post, will be questioned on issues around algorithm bias and their role in public order. Official sources told Akashwani News that Meta's global team is expected to be questioned sometime in the middle of next week. Meta will be asked to clarify issues around algorithm bias, how their algorithm operates, and the company's role in public order. The team will also appear before a parliamentary panel. The move assumes significance as the government earlier this week summoned a top Meta executive after Prime Minister Modi's recent post addressing India's youth and promising stringent measures against paper leaks was briefly restricted on Facebook. While Meta attributed the incident to a technical glitch and apologized, the Ministry of Electronics and Information Technology found the explanation inadequate.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश की यात्रा करेंगे, जहां वो विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीतारामन राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है।
1: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to his Iranian counterpart Abbas Araghchi last evening and conveyed India's deep concerns over the ongoing hostilities in the West Asia region. During the telephonic conversation, Dr. Jaishankar strongly urged that attacks on

0: released a revised schedule for the program. As per the new schedule, the last date for submission of enumeration forms as well as for the rationalization and reorganization of polling stations has been fixed as August 10, 2026. The draft electoral rolls will be published on August 17, 2026.
1: बात कोलकाता की। देश के अन्य हिस्सों की तरह कोलकाता में भी डिजिटल दो चरणों वाली जनगणना प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। पहला चरण आज से शुरू होकर 15 अगस्त तक चलेगा। नागरिक ऑनलाइन पंजीकरण कराकर स्वयं अपनी जनगणना कर भी सकते हैं। दूसरा चरण जो 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा, उसमें घरों की सूची बनाना और आवास जनगणना का कार्य शामिल होगा।

0: की। देश के अन्य हिस्सों की तरह कोलकाता में भी डिजिटल दो चरणों वाली जनगणना प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। पहला चरण आज से शुरू होकर 15 अगस्त तक चलेगा। नागरिक ऑनलाइन पंजीकरण कराकर स्वयं अपनी जनगणना कर भी सकते हैं। दूसरा चरण जो 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा, उसमें घरों की सूची बनाना और आवास जनगणना का कार्य शामिल होगा। तन्वी, देश दुनिया की खबरों के बाद अब बात उस चीज की जिसका सबसे इंतजार सबको रहता है, क्योंकि घर से बाहर निकलते ही अगर आपने आसमान नहीं देखा तो फिर क्या देखा। दिल्ली की बात करते हैं, मौसम क्या कहता है। राजधानी में बादलों का डेरा रहेगा, हल्की से मध्यम बारिश की आज संभावना व्यक्त की गई है, ऐसा मौसम विभाग कहता है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
1: Chennai is likely to witness a partly cloudy sky with the possibility of moderate rain or even thunderstorm. The temperatures are expected to range between the minimum 28 degrees and the maximum 38 degrees Celsius.
0: वही मुंबई कहता है कि उस पर भी बादल मेहरबान रहेंगे, बारिश की फुहारें दिन को सुहाना बनाएंगी, अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है, और समुद्र किनारे जाने का मन हो तो मौसम का हाल देखकर निकले।
1: So Bengaluru is somewhat similar to Mumbai because its forecast says generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature is expected to be 21 degrees and maximum will be reaching 29 degrees Celsius.
0: अब आपको कोलकाता लिए चलते हैं। मानसून का असर वहां भी दिखाई देगा, बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश, अधिकतम तापमान 31, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो जनाब, तीनों शहरों में मौसम का संदेश लगभग एक सा ही है, और किसी कवि ने क्या खूब कहा है, बादल भी हैं, फुहार भी हैं, मानसून का पूरा श्रृंगार भी है।
1: Absolutely. And Hyderabad, of course, comes in the similar cities because it's also likely to see a partly cloudy sky with one or two spells of rain or even thunder showers. Temperatures are expected to range from 24 degrees to 30 degrees Celsius.
0: तन्वी और मैं ये कहना चाहेंगे कि हैदराबाद में बारिश हो रही है और बारिश का आनंद ले रहे हैं, तो एक कप ईरानी चाय या फिर जाफरानी चाय, इसका मजा जरूर ले लीजिए, है ना?
1: Absolutely. So everyone loves tea. Most of the Indians, they are tea lovers and not coffee lovers. except the youth, maybe.
0: और तन्वी, चाय सिर्फ चाय पीना ही नहीं होता, चाय पीना एक बहाना भी होता है।
1: True.
0: ताकि मिलकर बात कर सके, बैठ कर सके और थोड़ी सी गप्पे लगा सके।
1: I couldn't agree more.
0: और अब वक्त है उस सेगमेंट का जिसका आपको इंतजार रहता है, ये जानने का कि क्या कुछ हो रहा है देश दुनिया में। लेकिन सबसे पहले आज का दिन क्यों खास है ये बताते चलते हैं।
1: Absolutely, there are multiple days that multiple things that we are celebrating today. Today we are observing World Wide Web Day. The web has revolutionized how people interact, learn and do business, driving major advances across sectors like education, healthcare and even research. The day also serves as a reminder to reflect on the web's evolution and to advocate for its ethical, inclusive and responsible use.
0: वर्ल्ड वाइड वेब डे, इसकी शुरुआत हुई थी सन 1989 में, और इस दौरान एक ब्रिटिश वैज्ञानिक सर टिम बर्न्स ली ने यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन में काम करते हुए एक सूचना प्रबंधन प्रणाली यानी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का प्रस्ताव रखा। सर टिम बर्न्स ली का उद्देश्य सूचना का एक ऐसा नेटवर्क बनाना था जिसे दुनिया भर के वैज्ञानिक आसानी से एक्सेस और शेयर कर सकें।
1: And today we are also observing World Lung Cancer Day. Of course, we both wish that nobody gets cancer, nobody gets sick ever. You all stay healthy, please eat healthy, stay healthy and live a wonderful life. But today we are observing World Lung Cancer Day for your prevention, for early detection, for research and even support for those affected. This day aims to educate the people on risk factors, their symptoms and the critical need for timely diagnosis. A key focus is dispelling myths such as the misconception that lung cancer only affects smokers. No, non-smokers can also be at risk. Recognizing symptoms early and seeking prompt medical attention can improve treatment outcomes multifold. And this year's theme of World Lung Cancer Day is Stronger Together, United for Lung Cancer.

0: अवेयरनेस।
1: ये एक वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती है और आज का दिन फेफड़ों के कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके प्रभावों को कम करने के लिए मनाया जाता है। हर साल लगभग 25 लाख नए मामले सामने आते हैं, जिसमें से 70-80% मरीजों की मृत्यु हो जाती है। और आज है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। बच्चे के जन्म के बाद के 6 महीने तक केवल ब्रेस्ट फीडिंग करने की सलाह दी जाती है। बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए ये बहुत जरूरी है।
0: Absolutely, this is not just a day, but it's an entire week. If we talk about the theme for this year, it's the global campaign focuses on the theme breastfeeding for a sustainable start in life, strengthen what works, highlights the nutrition, food security and poverty reduction. Focus on the campaign and goals dates.
1: और तन्वी, अब बातें आज के इतिहास की। कैलेंडर की हर तारीख सिर्फ एक दिन नहीं होती, बल्कि अपने भीतर इतिहास के अनगिनत किस्से समेटे होती है। सबसे पहले बात सन 1920 की। देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों का असंतोष बढ़ रहा था और ऐसे समय में आज ही के दिन सन 1920 में असहयोग आंदोलन का आह्वान किया गया।
0: Let's go a little back. In 1498, during his third voyage to the New World, Christopher Columbus became the first European to visit what is now Venezuela. And if we talk about 1914, on this particular day, Germany declared war on Russia, marking the beginning of the First World War. And in 1916, Annie Besant, in cooperation with Bal Gangadhar Tilak, started the Home Rule League movement with Dadabhai Nauroji as its president.
1: आज के दिन सन 1831 में भारत में आधुनिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई, तब उसे कलकत्ता कहा जाता था। और आज के दिन 1957 में NBT यानी नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना की गई।
0: In the year 1958, Raman Magsaysay Award for Community Leadership was given to Acharya Bhave.
1: अब रुक करते हैं विश्व इतिहास की ओर। 1 अगस्त 1914, यूरोप में तनाव अपने चरम पर था और इसी दिन जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और देखते ही देखते प्रथम विश्व युद्ध की आग पूरे यूरोप में फैल गई।
0: And if we talk about the year 1981, MTV, the first 24-hour music television network, was launched. Naveen, let me ask you, do you remember MTV and their VJs and the music that they used to play?
1: Tanvi, ek zamana tha jab TV ko kholte hi, jab channelon ki bharmar dheere dheere aani shuru hui thi, to music television yani MTV ek hi aisa source of entertainment tha jahan hame thoda sa kuch hatke milta tha. Aur ya yun kahein ki aaj ke jo Gen Z है, उस समय की जो जेंजी थी वो MTV देखा करती थी।
0: Absolutely true. And along with MTV, I can also remember VTV that came later. And if we talk about the year 1996, George R.R. Martin published the epic fantasy novel A Game of Thrones, the first installment in his A Song of Ice and Fire series.
1: तो ये थी वो घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से। और अब याद करते हैं उन व्यक्तियों को। सबसे पहले बात पुण्यतिथि की। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस एक नारे ने पूरे हिंदुस्तान में आजादी की आग फूंक दी थी। बाल गंगाधर तिलक, आज उनकी पुण्यतिथि है।
0: Today is his death anniversary, like you said, Naveen, an Indian nationalist and self-rule activist in the Indian independence movement. And before we talk about anything about him, let's know more about him through this particular clip taken from a documentary from Prasar Bharati archives. Let's play that.
2: बाल गंगाधर तिलक, जिनकी आत्मा का तेज आज भी स्वतंत्र भारत के हृदय में जगमगा रहा है। उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोला जिसमें विद्यार्थी देशभक्त बने। उनका साथ दिया उनके पुराने मित्र आगरकर, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर और नाम जोशी ने। फिर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई और फर्ग्यूसन कॉलेज बना। लेकिन थोड़ी समय बाद तिलक ने सोसाइटी से इस्तीफा दे दिया। उन्हें डर था कि अंग्रेजी हुकूमत का संरक्षण संस्थाओं की स्वतंत्र भावना का नाश कर देगा। उन्होंने अपने केसरी और मराठा समाचार पत्रों का काम संभाला। तिलक की जोरदार लेखनी ने अत्याचार की तलवार से लोहा लिया। उनके शब्दों ने देशवासियों को सदियों की नींद से जगाया।
1: आज ही के दिन 1913 में हिंदी के पहले तिलस्मी लेखक देवकी नंदन खत्री जी का भी निधन हुआ था। और तन्वी, चंद्रकांता एक ऐसा महान उपन्यास है जिसे कोई नहीं भूल सकता। और कहते हैं कि उस समय लोगों ने चंद्रकांता पढ़ने के लिए

इसी की थी, वो इसलिए सीखी थी क्योंकि ये वो उपन्यास था जिसमें तिलस्म था, जिसमें जादू था, जिसमें जादुई किले थे और बहुत कुछ ऐसा था कि वो 90s का जो दौर था ना, उसमें टीवी खोलते ही हर कोई पहले चंद्रकांता ही देखने की कोशिश करता था।

0: the very strong dialogues of hers from the film Thappar.
1: खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं. हाउसवाइफ हूँ, चॉइस थी, किसी ने फोर्स नहीं किया था. कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, इनफैक्ट खुश थी उसके ड्रीम्स में, उसकी लाइफ में पार्टिसिपेट करके. तो शायद इस सब में मैंने आपको ऐसा बना लिया जिसको थप्पड़ मारा जा सकता होगा. ये अनरीजनेबल नहीं है, नहीं मार सकता. जस्ट अ स्लैप, पर नहीं मार सकता.
2: तुम क्या चाहती हो?
1: खुश रहना चाहती हूँ. जब बोलूँ कि खुश हूँ तो झूठ ना लगे.
0: And moving further, today is also the birthday of another film actress, Mrunal Thakur, who works predominantly in Hindi and even Telugu films. So you have seen Super 30, where she was playing the lead role along with Hrithik Roshan and also Batla House. I'm expecting that you have seen this movie. And her most of the Telugu romantic movies are very famous, but one of them is Sita Ramam. So let's hear a song from Super 30, picturized on her, sung by Shreya Ghoshal.

0: तन्वी, जब भी बॉलीवुड में डांस की बात होती है तो हमारे दिमाग में ऋतिक रोशन, गोविंद या मिथुन चक्रवर्ती का नाम आता है, लेकिन जानते हैं हिंदी सिनेमा का सबसे पहला डांसिंग सुपरस्टार कौन था?
1: कौन?
0: भगवान दादा। एक ऐसा शख्स जिनकी अनोखी डांस स्टेप को अमिताभ से लेकर सुल्तान, सलमान खान सब ने कॉपी किया, और जब भी गाना बजता था ना तो लोग झूम उठते थे।

भगवान दादा का जन्म आज के दिन बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। असली नाम था भगवान आभाजी पल्लव। फिल्मों में आने से पहले कपड़ा मिल में काम किया, शादियों में खाना खाया और यहाँ तक कि मजदूरी भी की, लेकिन उनका दिल सिनेमा के लिए धड़कता था। साइलेंट फिल्मों से अपना करियर शुरू किया और तन्वी जानती है उनकी किस्मत पलटी सन 1951 में, जब राज कपूर के कहने पर उन्होंने एक फिल्म बनाई अलबेला, और इस फिल्म का ये खूबसूरत गीत आज भी लोगों की जुबान पर है, ओ बेटा जी।

दोस्तों ये गीत सिर्फ एक फिल्मी गाना नहीं था बल्कि खुद भगवान दादा की जिंदगी का सच बन गया था। लेकिन उनकी फिल्म का वो गीत जिसे सुने बिना या जिस पे थिर के बिना हम उन्हें नहीं भूल सकते वो है कुछ यूं, शोला जो भड़के।

0: आज सवेरे के आज के संस्करण में बस इतना ही। उम्मीद है कि प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। अब मुझे नवीन और तनवीन को दे इजाजत।
1: Have a superb day. नमस्कार।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर वे वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। भारत ने ईरान से किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंड का प्रावधान करने और फास्ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्टैग अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूर सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसे पावर ग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा लगभग 5,550 करोड़ रुपए के निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित कुर्नूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र भाग ए और भाग बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम

0: अभी उद्घाटन करेंगे। वे अनंतपुरम में 2500 मेगावाट और कुर्नूल में 1000 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पावर ग्रिड द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यान्वित ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 1880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसंख्या के आंकड़े एकत्र करना है। 2 चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
3: पहले चरण में नागरिक आज से 15 अगस्त तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल se.census.gov.in पर अपनी जानकारी देकर सेल्फ इन्यूमरेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस चरण का दूसरा भाग 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी मकान सूचीकरण और शुरुआती गिनती के लिए घरों का दौरा करेंगे। आखिरी चरण अगले साल फरवरी में होगा, जब जनगणना करने वाले कर्मचारी वास्तविक जनसंख्या गणना के लिए प्रत्येक घर के हर सदस्य के नाम, उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। डेकाथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
3: अस्मिता डे और हर्ष

0: सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्र कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए श्री मोदी का बयान अनेक अखबारों की हेडलाइन है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर कहा, हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए। पत्र ने अंदर के पृष्ठ पर आप बीती शीर्षक से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का वक्तव्य दिया है, वर्दी के पीछे भी एक परिवार होता है। दैनिक भास्कर ने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है, पिता को भीड़ ने खींचा, खून से सनी वर्दी में घर लौटे। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर भी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अदालत ने कहा, अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज की अंतर आत्मा को झकझोर देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीदें बंधी। दंगों में धर्म के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया, जिसके जख्म आज भी हरे हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार तो है, पर इसकी आड़ में उपद्रव फैलाने की छूट किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। कुलगांव में आतंकी हमला, मजदूर की मौत, नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है, कश्मीर में आतंकियों के नाम पूछकर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदक मिलने की अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, जूडो में अस्मिता हर्ष की स्वर्ण गाथा, जीते 2 गोल्ड मेडल। अमर उजाला ने हर्ष सिंह और अस्मिता का चित्र देते हुए लिखा है, 92 साल में पहली बार देश को जूडो में स्वर्ण, पहली बार जिंदा दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत, लोकसत्ता में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for compassion and guidance for misguided youth. Says hatred and abuse never solve anything. President gives assent to anti-paper leak bill introducing stricter punishment and setting up of fast-track courts. Prime Minister to launch multiple development projects in Andhra Pradesh and Karnataka today. India raises concerns over ongoing hostilities in West Asia region, urges Iran to avoid attacks on commercial shipping and seafarers. Italy suspends free border travel with Spain over Ceuta migrant crisis. And at Commonwealth Games, India clinched 2 historic gold medals in judo, secured double podium finish in men's

अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: அரங்கேசியில் இதுவரை என் விஸ்வேஸ்வர் அவர்களின் புல்லா.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மேன் நவீன் சக்சேனா. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक बृहस्पतिवार को संसद में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाई जानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
2: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्व

0: आग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे, जहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को भी संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया दो चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसांख्यिकी आंकड़े एकत्र करना है। दो चरणों वाली यह प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। अस्मित अडे और हर्षिंग ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। वहीं मुक्केबाजी में 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक में रजत, जबकि यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। इस बीच तेजस्विन शंकर ने डेकेथलॉन में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 23 पदक जीत लिए हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के 57 किलोग्राम जूडो स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर यामिनी मौर्य को बधाई दी है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राहत बचाव और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करेंगे। हीराकुंड जलाशय का जलस्तर बढ़कर 625 फीट के ऊपर पहुंच चुका है। जल नियंत्रण के लिए 22 गेट खोले गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Andhra Pradesh and Karnataka today. Mr. Modi will first travel to Andhra Pradesh, where he will lay the foundation stone, inaugurate and dedicate to the nation multiple development projects worth nearly 18,000 crore rupees at Bhogapuram in Vizianagaram district. In Karnataka, Prime Minister Modi will inaugurate Swami Vivekanand Cultural Youth Centre Vivek Smarak at Mysuru in Karnataka today. Prime Minister Narendra Modi has said that abuse and hatred never solve anything. He appealed for compassion towards misguided youth who have gone astray, saying they should be guided onto the right path in the spirit of nation building and in national interest rather than punished. In a video message posted on his social media handles, the Prime Minister referred to the recent incident at Jantar Mantar in national capital, where abusive language was used against him and his late mother. He said the episode had been witnessed by people across the country and the world, adding that while the anger and disappointment in society over such conduct were understandable, childhood is also a phase of learning, making mistakes and correcting them.
2: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
1: President Draupadi Murmu has given assent to the public examinations, Prevention of Unfair Means Amendment Bill

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बर्बर बल प्रयोग के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। पश्चिम एशिया क्षेत्र में तनाव पर भारत ने चिंता व्यक्त की। ईरान से वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न करने को कहा। भारत और चीन के बीच सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते आज से फिर सीमा व्यापार शुरू। इटली ने स्यूटा प्रवासी संकट के कारण स्पेन के साथ मुक्त सीमा बंद की। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बर्बर बल प्रयोग के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि पीओजेके के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इन घटनाओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है।
1: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
0: भारत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथा कथित चुनाव के खिलाफ जारी प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के

0: को नकारने का प्रमाण है। रूस की सेना में शामिल भारतीय नागरिकों के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि अब तक 139 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है और करीब 24 अन्य भारतीयों को वापस लाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने लोगों को फर्जी नौकरी के प्रस्तावों से भी सावधान रहने की सलाह दी। अमेरिका से भारतीय नागरिकों के निर्वासन के बारे में प्रवक्ता ने बताया कि इस वर्ष अब तक 1260 भारतीयों को वापस भेजा गया है। पिछले वर्ष ये संख्या 3567 थी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्हें चल रहे घटनाक्रम और चर्चाओं के संबंध में ईरान के दृष्टिकोण से भी अवगत कराया गया। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा संवाद और कूटनीति का समर्थक है। भारत और चीन के बीच आज सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा व्यापार फिर से शुरू हो रहा है। कोविड के कारण 2020 से दर्रे से होकर सीमा पार व्यापार निलंबित था। सीमा पार व्यापार को इससे बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे पंजीकृत व्यापारियों, परिवहन संचालकों और संबंधित व्यवसायों को लाभ होगा। नाथुला के माध्यम से व्यापार 4 दशक से अधिक समय तक निलंबित रहने के बाद 2006 में दोबारा शुरू हुआ था। विदेश सचिव विक्रम मिसरी भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा के बाद कल स्वदेश लौट आए। इस दौरान श्री मिसरी ने भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों पक्षों ने भारत सरकार द्वारा दिए गए 10,000 करोड़ रुपए के समर्थन की समग्र प्रगति और क्रियान्वयन की समीक्षा की। कुल 12 नई योजनाबद्ध सहायता परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनकी कुल लागत 332 करोड़ रुपए है। एक रिपोर्ट।
1: ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शहरी सुविधाएं और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को कवर करती हैं। विदेश सचिवों ने भूटान और भारत के एक्जिम बैंक के बीच अम्ब्रेला लाइन ऑफ क्रेडिट समझौते के बारे में भी बात की, जिसके तहत भूटान में ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 4,000 करोड़ रुपए की रियायती लाइन ऑफ क्रेडिट को चालू किया जाएगा। दोनों देशों के बीच अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान नई दिल्ली और भूटान के खेसर ग्यालपो आयुर्वेद विज्ञान विश्वविद्यालय के बीच स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा और प्रशिक्षण पर अनुसंधान और सहयोग के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश सचिव मिस्त्री ने भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री शेरिंग तोगपे और विदेश व्यापार मंत्री ल्योम्पो डी एन घुंगेल से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने विकास, साझेदारी, ऊर्जा, व्यापार और निवेश संपर्क, जन जन संबंधों के साथ साथ पारस्परिक महत्व के अन्य क्षेत्रीय मुद्दों सहित द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। विश्व दर्पण समाचार के लिए मृगनयनी पांडे।
0: उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार उर्लोविच कल से 4 दिन की यात्रा पर भारत आएंगे। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। साथ ही नई दिल्ली में आयोजित व्यापार मंच में भी भाग लेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। मोरक्को से स्पेन के सेउटा एनक्लेव में प्रवासियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर इटली ने स्पेन के साथ मुक्त सीमा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इससे हवाई और समुद्री यातायात प्रभावित होगा और स्पेन की शेंगेन सीमा मुक्त यात्रा व्यवस्था भी अस्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इसके माध्यम से 29 यूरोपीय देशों में स्वतंत्र रूप से यात्रा की जा सकती थी। एक रिपोर्ट।
2: इटली की विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने कल इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इटली की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यूरोपीय संघ की बाहरी सीमाओं की रक्षा के लिए स्पेन के साथ शेंगेन समझौते का अस्थायी निलंबन आवश्यक था। ताजानी के अनुसार मोरक्को से हजारों प्रवासियों के सेउटा में प्रवेश करने के बाद ये कदम आवश्यक हो गया। उन्होंने कहा कि यह कदम यूरोपीय संघ के नियमों के अंतर्गत अनुमत है और आज से 1 महीने तक लागू रहेगा। इस बीच सेउटा से 48,000 से अधिक प्रवासी मोरक्को लौट चुके हैं, जहां हाल के दिनों में 60,000 लोग पहुंचे थे। स्पेन और मोरक्को ने सेउटा में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले सभी प्रवासियों की शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने के लिए उपायों को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। स्पेन के गृह मंत्री फर्नांडो ग्रैंडे मार्लस्का ने कहा कि दोनों देश स्थिति को संभालने और सीमा नियंत्रण बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विश्व दर्पण के लिए नवीन सक्सेना।

0: ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला होता है तो वह पश्चिम एशिया में स्थित इसराइल के प्रमुख बुनियादी ढांचे और अमरीका की ऊर्जा सुविधाओं पर हमला करेगा। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब खबरें आ रही हैं कि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी ठिकानों पर संभावित नए हमलों की तैयारी के आदेश दिए हैं। रूस ने कल रात यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसमें 3 लोग मारे गए और 12 से अधिक लोग घायल हो गए। यह हमला रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले के 2 दिन बाद हुआ। इसमें 10 नागरिक मारे गए थे और 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। टेकाथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
1: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बर्बर बल प्रयोग के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। पश्चिम एशिया क्षेत्र में तनाव पर भारत ने चिंता व्यक्त की। ईरान से वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न करने को कहा। भारत और चीन के बीच सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते आज से फिर सीमा व्यापार शुरू। इटली ने स्यूटा प्रवासी संकट के कारण स्पेन के साथ मुक्त सीमा बंद की और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. New Delhi calls upon international community to hold Islamabad accountable for ruthless use of force against peaceful protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. India raises concerns over ongoing hostilities in West Asia region, urges Iran to avoid attacks on commercial shipping and seafarers. Border trade between India and China through Nathula Pass to resume in Sikkim from today. Italy suspends free border travel with Spain over Ceuta migrant crisis. And at Commonwealth Games, India clinched 2 historic gold medals in judo, secured double podium finish in men's javelin throw, and win a first ever bronze in decathlon. India has said the so-called elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, stand as a humiliating rejection of the Pakistani establishment. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, Pakistani establishment continues to unleash ruthless force against peaceful civilians in POJK. He said the crackdown has resulted in the tragic death of over 40 civilians and serious injuries to many. The spokesperson said, facing a violent regime, people have requested international organizations for an independent investigation into the unlawful killings. India has urged the international community to scrutinize Pakistan's actions and hold it accountable for its atrocities.
3: The so-called elections stand as a humiliating rejection of the Pakistani establishment facing a violent regime. The people there have requested international organizations for an independent investigation into the unlawful killings. We urge that the international community should scrutinize Pakistan's actions.

0: போற என்ன வாங்க
1: வாங்க
0: ஓடி போனா
1: யார
0: போல
1: இந்த பொண்ண போல

பிடிச்சிட்டு

0: நிறைவு பெற்றது சுகமான ராகங்கள். தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रूपये तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड है। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरु पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाई जानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है।

से ग्लेरिटम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से फोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। श्री जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया दो चरणों में डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएगी। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से ताजा जनसांख्यिकीय आंकड़े एकत्र करना है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। वहीं मुक्केबाजी में 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक में रजत जबकि यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर ने डेकाथलॉन में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने अब तक 5 स्वर्ण 12 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 23 पदक जीत लिए हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जूडो खिलाड़ी यामिनी मौर्य को महिलाओं के 57 किलोग्राम जूडो प्रतिस्पर्धा में रजत पदक हासिल करने के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

வருகின்றார்.

நாடமும் பிரம்மமும் சேர்ந்தவன் நாயகன் ஆணோ பெண்ணோ அவன்

அருகே கருகே போயனோ. எவரோ கலா

கண்ணிகள் அழகான மலைவா.

0: நிறைவு பெற்றது மெல்லிசை. தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஃபர்ஹத் நாஸ். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आंध्र प्रदेश में हैं और वे भोगमरमपुरम में सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: की विशेषता है कि उन्होंने दो क्षितिजों को छुआ है। एक तरफ ऊंची आसमान को सुने वाली व्यवस्था एयरपोर्ट का निर्माण और दूसरी तरफ मेरे यहां के आदिवासी बहनों के द्वारा दीमसा नृत्य का विश्व रिकॉर्ड बनाना। मैं चंद्रबाबू के इस विजन को विशेष रूप से सराहना करता हूं। मित्रों,
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने यात्री टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने 13,500 से अधिक आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक थिमसा नृत्य प्रस्तुति देखी, जो उत्तरी आंध्र की जीवंत आदिवासी संस्कृति को दर्शाती है। श्री मोदी आज राज्य में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
3: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम कर दी हैं। कटौती के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2,738 रुपये हो गई है। वहीं कोलकाता में 2,872 रुपये 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपये 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपये हो गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितम्बर तक जारी रहेंगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन 2 श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतकों

0: தொடர்வது ஆங்கிலத்திலும் ஹிந்தியிலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: குட் ஆஃப்டர்நூன், திஸ் இஸ் ஆகாஷ்வாணி அண்ட் ஐ எம் சாய்ரா முஜ்தபா வித் தி மிட் டே நியூஸ். The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Greenfield Aluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram in Vijayanagaram district of Andhra Pradesh. Prime Minister launches projects worth 18,000 crore rupees in infrastructure and energy sectors. In Jammu and Kashmir, second labourer injured in yesterday's terrorist attack in Kulgam succumbs to injuries. Price of 19 kilogram commercial LPG cylinder reduced by about 200 rupees. Flood situation remains critical in Odisha, with Mahanadi river continuing to swell, threatening fresh areas. And in Taipei Open Badminton, Tanvi Sharma storms into women's singles final. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said Andhra Pradesh is moving ahead at a rapid pace and that the centre is fully committed to realising the vision of Swarn Andhra and Viksit Bharat through large-scale infrastructure and industrial development. Addressing a public meeting after inaugurating the Aluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram, the Prime Minister said development projects worth about 18,000 crore rupees, including airport, road and energy infrastructure, reflect the state's fast-paced progress under the NDA governments at the centre and in the state.
2: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीस की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है. एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं. इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं. ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है.
1: Mr. Modi described the new airport as the runway for the growth of Andhra Pradesh, particularly North Andhra, and a launchpad for the aspirations of the state's youth. He announced that the airport has been named after freedom fighter Aluri Sitarama Raju, saying the name would inspire future generations with the spirit of patriotism and public service.
2: NDA सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं. 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है. इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की. कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की. इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे.
1: Mr. Modi said the centre is transforming Andhra Pradesh into a major growth engine through ports, highways, railways and logistics under the PM Gati Shakti National Master Plan. He said railway projects worth nearly 1 lakh crore rupees are under implementation, while more than 70 railway stations are being modernised. The Prime Minister expressed confidence that under the leadership of Chief Minister N. Chandrababu Naidu, Andhra Pradesh would play a major role in achieving the goal of Viksit Bharat 2047.
2: मुझे पूरा विश्वास है आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे. आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है. मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं.
1: Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu praised Prime Minister Modi's leadership for helping rebuild Andhra Pradesh and transform North Andhra. He said the inauguration of the Aluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram was a historic milestone that would bring investment, industries, jobs and new opportunities to the region. Indian Railways has approved the multi-tracking of the 29-kilometre Danapur to Fatuha section of

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में विमानन क्षेत्र के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है।
1: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस हवाई अड्डे के उद्घाटन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।
3: वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2,738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

0: यह 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई। इससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। एक रिपोर्ट।
1: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उड़ीसा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आयोग ने बताया कि उड़ीसा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर इस समय सारणी में संशोधन किया गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। पात्र महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in पर पंजीकरण कर सकती हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने दिल्ली मंत्रिमंडल की इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी इसका ऐलान किया था। वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतोहा खंड पर 976 करोड़ रुपए की लागत से 1 से अधिक लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में वृद्धि संभव होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेंगी। इससे प्रति वर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। आयकर विभाग ने बताया है कि वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक 59 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में करदाताओं को धन्यवाद देते हुए विभाग ने कहा कि उनका विश्वास और समय पर अनुपालन ही भारत के विकास को गति देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गोवा स्थित नौसेना अकादमी के 38वें एकीकृत कैडेट पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल एएन प्रमोद जुलाई 1990 में नौसेना में कमीशन हुए थे। 36 वर्ष से अधिक के अपने विशिष्ट करियर में कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना तैयारी और परिचालन तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे राज्य में बाढ़ की

0: स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने राज्य में अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा और खोर्धा जिलों के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और केंदुझर जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। भद्रक में कई गाँव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है और संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, केरलम और माही में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसून को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन्ह गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी, विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले चार दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। एक और बयान में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों द्वारा किए गए वायदों को पूरा करने की मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहे। इस बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने, मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल के किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार 6 वर्षों से रुका हुआ था। इससे 6 साल से ज्यादा समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी व्यापार के दायरे को विविधतापूर्ण बनाने, व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने और बाजार तक पहुंच से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से जुड़ी पहलों पर सहमत हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। ये हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले के ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में।

0: पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: நேரம் இப்பொழுது 2:30.

0: எஃப்எம் கோல்ட் அலைவரிசையில் இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति

0: को दर्शाती है।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के नागर विमानन क्षेत्र की तेजी से होते विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में परिचित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना के ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई। इससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन 2 श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई। आतंकवादियों की तलाश जारी है। राज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की है और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले 4 दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। इस बीच अमरीका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में लगभग 200 रुपए की कटौती की है। इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। ओडिशा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। ओडिशा में महानदी में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। निचले इलाकों में कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर राहत कार्यों की समीक्षा की। इस बीच मौसम विभाग ने मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में प्रीति पवार और जैस्मिन लैम्बोरिया ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग में, वहीं जैस्मिन ने 57 किलोग्राम वर्ग में यह पदक अपने देश के नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Greenfield Aluri Sitaram Raju International Airport at Bhogpuram in Vijayanagaram district of Andhra Pradesh today. He also dedicated to the nation, inaugurated and laid the foundation stone for key infrastructure projects worth around 18,000 crore rupees. Addressing the gathering, Mr. Modi said the projects launched today spanning roads and energy security reflect the rapid pace of Andhra Pradesh's development. Highlighting the significance of the new airport, the Prime Minister said it would serve as the runway for the growth and development of Andhra Pradesh, particularly North Andhra, and act as a launch pad for a brighter future.

0: ஆயுஷ்மான் பாரதம் திட்டத்துக்கு உட்பட்டு சுமார் 60 கோடி மக்கள் 5 லட்சம் ரூபாய் வரையிலான இலவச மருத்துவ சிகிச்சைக்கு உரிமையாளர்கள். 12 கோடிக்கும் அதிகமானவர்களுக்கு இதுவரை இலவச மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதனால் ஏழை குடும்பங்களின் மருத்துவ செலவில் சுமார் 2 லட்சம் கோடி ரூபாய் வரை சேமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆயுஷ்மான் செயலியை இன்றே பதிவிறக்கம் செய்து ஆயுஷ்மான் அட்டையை தயார் செய்து கொள்ளுங்கள். மேலும் தகவல்களுக்கு 1455 என்ற எண்ணோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भारत सरकार का उपक्रम परमाणु ऊर्जा विभाग IREL इंडिया लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। मुख्य प्रबंधक तकनीकी मैकेनिकल, उप प्रबंधक तकनीकी मैकेनिकल, सहायक प्रबंधक तकनीकी मैकेनिकल, मुख्य प्रबंधक तकनीकी इलेक्ट्रिकल, उप प्रबंधक तकनीकी इलेक्ट्रिकल, सहायक प्रबंधक तकनीकी इलेक्ट्रिकल, उप प्रबंधक तकनीकी केमिकल, सहायक प्रबंधक तकनीकी केमिकल, उप प्रबंधक तकनीकी खनिज, उप प्रबंधक तकनीकी खनन, सहायक प्रबंधक तकनीकी खनन और उप प्रबंधक तकनीकी वाणिज्य और खरीद। इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से आरक्षण, आयु मानदंड, शैक्षिक योग्यताएं, अनुभव अपेक्षाएं, छूट, पोस्टिंग का स्थान और अन्य संबंधित विवरण संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं IREL की वेबसाइट www.irel.co.in। IREL इंडिया लिमिटेड इन पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित कर रहा है। उप प्रबंधक तकनीकी औद्योगिक सुरक्षा, सहायक प्रबंधक तकनीकी औद्योगिक सुरक्षा, सहायक प्रबंधक तकनीकी इंस्ट्रूमेंटेशन, उप महाप्रबंधक तकनीकी IT, प्रबंधक तकनीकी IT, उप प्रबंधक तकनीकी IT तथा उप प्रबंधक तकनीकी जियोलॉजी। इन सभी पदों पर आवेदन करने के लिए नियम, शर्तें, वेतनमान, आरक्षण और तैनाती के स्थान की जानकारी के लिए आप देख सकते हैं विभाग की वेबसाइट www.irel.co.in। IREL इंडिया लिमिटेड इन गैर तकनीकी पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित कर रहा है। वरिष्ठ प्रबंधक विधि, प्रबंधक विधि, वरिष्ठ प्रबंधक सुरक्षा और प्रबंधक सुरक्षा। इसी क्रम में कुछ अन्य पद हैं: वरिष्ठ प्रबंधक चिकित्सा, महाप्रबंधक वित्त, मुख्य प्रबंधक वित्त, वरिष्ठ प्रबंधक वित्त E4, उप प्रबंधक वित्त E2, सहायक प्रबंधक वित्त E1, उप महाप्रबंधक विपणन E6, उप प्रबंधक बिक्री E2, उप प्रबंधक विधि और HRM E2, उप प्रबंधक HRM प्रशासन, सहायक प्रबंधक HRM, सहायक प्रबंधक राजभाषा और सहायक प्रबंधक कंपनी सचिव। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आरक्षण, आयु मानदंड, शैक्षिक योग्यताओं, अनुभव अपेक्षाओं, छूट, पोस्टिंग के स्थान और अन्य संबंधित विवरण के लिए देख सकते हैं IREL की वेबसाइट www.irel.co.in। आवेदन 10 अगस्त 2026 शाम 6 बजे तक किए जा सकते हैं। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

माहौल में लर्जा शरारे जंग है आज, हौसले वक्त की और जीत के यकरंग है आज। आप गीनों में तपा वलवलाए संग है आज, हुस्न और इश्क हम आवाज और हम आहंग है आज। जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिंदगी जहद में है सब्र के काबू में नहीं, नब्ज हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़े खुले

0: स्पेशली
1: बिल्कुल शगुन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की सलाह देते हैं कि जन्म के बाद पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू किया जाए। पहले 6 महीनों में केवल स्तनपान कराया जाए और 2 साल या उससे अधिक समय तक पूरक आहार के साथ साथ स्तनपान जारी रखा जाए।
0: Well, that is true, Mukesh. And as we mentioned in the beginning of the program, that this day is also observed in India as Muslim Women's Rights Day, right?
1: बिल्कुल। ये दिन 2020 से मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की याद में मनाया जाता है, जिसने तुरंत 3 तलाक या तलाके बिद्दत की प्रथा को गैर कानूनी और अमान्य घोषित कर दिया था।
0: Well, right. And the observance, Mukesh, it marks a significant legal milestone and which is aimed at strengthening the rights, the dignity and legal protection of Muslim women. Former United Nations Secretary General Kofi Annan once said, there is no tool for development more effective than the empowerment of women. And how right?
1: बिल्कुल, आज के दिन ये शब्द बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि जब महिलाओं को समान अधिकार, कानूनी सुरक्षा और अवसर मिलते हैं तो परिवार समृद्ध होते हैं, समुदाय मजबूत होते हैं और देश आगे बढ़ते हैं।
0: True. The society, I believe, cannot succeed when half of its population they are held back, whether it is ensuring that every newborn receives the healthiest possible start through breastfeeding, or also ensuring that every woman can live with equality, justice and dignity. So today's observances, they carry the same message, Mukesh, that empowering women, it is not simply about improving one life, it is about building a better future for all.
1: बिल्कुल शगुन, जब माताओं को सहयोग मिलता है तो बच्चे फलते फूलते हैं। जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो समाज तरक्की करता है, और जब सम्मान एक साझा मूल्य बन जाता है तो मानवता सबसे बड़ा कदम आगे बढ़ाती है।
0: Also, we have World Lung Cancer Day, World Wide Web Day, National Mountain Climbing Day as well, Mukesh.
1: जी हाँ, ये दिन माताओं और महिलाओं के अधिकारों पर ध्यान तो केंद्रित करता ही है, लेकिन दुनिया 3 अन्य महत्वपूर्ण अवसरों को भी मना रही है, जो हमें स्वस्थ जीवन जीने, बड़ी सोच रखने और नई चीज खरीदने के लिए या खोजने के लिए प्रेरित करते हैं।
0: So, first one. Let's take it one by one. World Lung Cancer Day. This is observed every year on 1st of August. And it was established in 2012, World Lung Cancer Day. And this was done by the Forum of International Respiratory Societies in collaboration with the International Association for the Study of Lung Cancer and other global health organizations.
1: जी हाँ, इसका मकसद फेफड़े के कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जो दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों का मुख्य कारण है, और साथ ही इसकी रोकथाम, शुरुआती पहचान, समय पर इलाज और मरीजों के लिए सहयोग को बढ़ावा देता है।
0: एंड वी ऑल्सो हियर फ्रॉम आवर एल्डर्स दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो अवॉइडिंग टोबैको, रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन, ऑल्सो हार्मफुल सब्सटेंसेस and seeking timely medical advice can significantly reduce the risk of lung cancer.
1: तो आइए हम जिस हवा में सांस लेते हैं उससे आगे बढ़कर उस वेब की बात करते हैं जो दुनिया को जोड़ता है।
0: जी।
1: पहली अगस्त को मनाया जाने वाला वर्ल्ड वाइड वेब डे यानी इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांतियों में से एक है। वर्ल्ड वाइड वेब का जश्न मनाना है मनाया जाता है और इसे 1989 में ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक सर टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था।
0: And it was designed to make information easily accessible across the internet. The web transformed the way we learn, we work, we communicate, we innovate, and so on.
1: जी हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट नहीं बल्कि इंटरनेट पर चलने वाली एक सर्विस है, जो हमें वेब ब्राउजर के जरिए वेबसाइट को एक्सेस करने की सुविधा देती है।
0: So, reflecting on his invention, whose invention Sir Tim Berners-Lee once said that the web does not just connect machines, it connects people. Wow. And 3 decades later, those words, they continue to define the power of technology that has brought the world closer than ever before. Right?
1: जी हाँ, और आखिर बिल्कुल बिल्कुल, और आखिर में हम उन लोगों के लिए जो मानते हैं कि आसमान भी कोई सीमा नहीं है, पहले अगस्त को मनाए जाने वाला नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे रोमांच और दृढ़ संकल्प की भावना का सम्मान करता है।
0: And this day commemorates the achievements of Bobby Matthews, who is credited with climbing all 46 high peaks of New York's Adirondack Mountains by 1st August 1970.
1: बिल्कुल, मशहूर पर्वतारोही सर एडमंड हिलेरी के शब्दों से बेहतर कोई और बात नहीं हो सकती। वे तेंजिंग नोर्गे के साथ 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। उन्होंने मशहूर बात कही थी, हम पहाड़ को नहीं बल्कि खुद को

0: जीतते हैं.
1: राइट, वी टेलिंग यू अबाउट एडमंड हिलरी, सर एडमंड हिलरी, ऑल्सो माउंटेनियर बॉबी मैथ्यूज एज वेल. एंड एवरी समिट रिमाइंड्स अस दैट द ग्रेटेस्ट विक्ट्रीज आर ऑफन ओवर आर ओन फियर्स, डाउट्स एंड आर लिमिटेशंस.
0: बिल्कुल शगुन, चाहे बात हमारे फेफड़ों की देखभाल की हो, या वर्ल्ड वाइड वेब की असीमित संभावनाओं की हो, या नई ऊंचाइयों को छूने का साहस करने की हो, आज ये आयोजन हमें एक साझा संदेश देते हैं कि स्वस्थ जीवन जिए, लगातार सीखते रहें और हमेशा और ऊंचे अपने लक्ष्य पाने के लिए कोशिश करते रहें. और आकाशवाणी पर परिक्रमा कार्यक्रम में वक्त हुआ है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि क्या कुछ उनके पास विशेष इस क्रम में. सबसे पहले पांडिचेरी चलें.
1: Exactly. How did you know about it? So the we will talk about the Manifest Dance Film Festival. Celebrating the artistic fusion of dance, movement and cinema, this is underway at Vision Vivekanand Studio on Old Auroville Road near Puducherry. So the second day of the three-day festival features a packed schedule of workshops, international film screenings, discussions and live performances. Let's gather more details from our correspondent.
2: The day began with the ripple effect, an embodied movement practice, a contemporary movement workshop conducted by Mumbai-based dancer and educator Melita D'Souza. This was followed by a walking techniques workshop led by Kolkata-based artist Sangram M and Movement as Ritual, a session conducted by classical dancer and arts-based therapist Mrunmoy Majumdar. A panel discussion later explored various aspects of dance film practice and screen choreography. The evening program features two curated packages of international short dance films. The first, Edge of Reason, brings together films from Spain, Canada, United States, Finland, and Netherlands. The films explore themes ranging from human relationships and environmental concerns to climate grief and emotional resilience. The second package, Persistence, showcases films from Nigeria, United States, Germany, Brazil, and United Kingdom, exploring identity, memory, family, womanhood, and belonging through movement-based storytelling. The festival's live performance segment presents a double bill featuring Melita D'Souza's Ripple Effect and Sangram M's Empress Queen vs. Kairathi 2026. The day's events will wrap up with Under the Stars, an open-air screening of international dance films from the United States, Mexico, Poland, Finland and Hong Kong. The festival will conclude tomorrow. For Parikrama, this is Bibin Asnath, Akashwani News, Puducherry.
0: और पुदुचेरी से शगुन अब अपने श्रोताओं को ले चलते हैं गोवा.
1: ओके,
0: गोवा अपनी समृद्ध स्थापत्य विरासत को आधुनिक तकनीक और सतत विकास के साथ जोड़ते हुए देश के लिए एक नई मिसाल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गोवन आर्किटेक्चर एंड सस्टेनेबिलिटी का आयोजन किया गया. सम्मेलन में विरासत संरक्षण, हरित भवन, जलवायु अनुकूलन, विकास और भविष्य की शहरी योजना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई. तो सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट.
3: गोवा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में नीति निर्माताओं, प्रसिद्ध वास्तुकारों, शहरी योजनाकारों, सतत विकास विशेषज्ञों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और देश विदेश से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और अन्य गणमान्य अतिथियों ने किया. इसमें गोवा की वास्तुकला और विरासत संरक्षण के साथ हरित भवन, जलवायु अनुकूल निर्माण और सतत विकास जैसे विषयों पर मंथन हुआ. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा
4: कि मैं अभिनंदन करना चाहता हूं गोवा के माननीय मुख्यमंत्री जी का और गोवा सरकार का कि उन्होंने ऐसे कंटेम्पररी सब्जेक्ट पर जो केवल भारत के लिए नहीं, केवल विश्व के लिए नहीं, अपितु मानवता के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है. और मैं ये मानता हूँ कि ये कार्यशाला, इसका भाव और इस पर होने वाला डिस्कशन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प कि हम विरासत का संरक्षण करते हुए, सम्मान करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े, उसकी साकार अभिव्यक्ति की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम. आज जब दुनिया कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की बात कर रही है, कार्बन न्यूट्रलिटी की बात कर रही है, क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही है, तब इस तरह का विचार मंथन करने के लिए आयोजित की जाने वाले सेमिनार जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण भी है, आवश्यक भी है और दूरगामी परिणाम करने वाली भी होंगे.
3: सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि विरासत संरक्षण और आधुनिक विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं. विशेषज्ञों ने कहा कि पारंपरिक वास्तुकला और आधुनिक तकनीक का समन्वय

0: more from a folk researcher, Sapan Mishra.
1: Serious poetry and standardizing the language in terms of grammar was the main contribution of Satyanarayan Bahidhar. He proved that this language has the capacity to express higher thoughts. The 1st of August is celebrated as Sambalpuri Din to highlight the language, literature, tradition and culture of this region, which is classed apart from the main culture of Orissa.
0: Across all the districts of Western Orissa, the occasion is marked by colorful rallies, literary gatherings, cultural programs, folk performances and handloom exhibitions. The celebration is incomplete without the rhythm of Dalkhai, the grace of Rasarkeli and the devotion of Karma and the vibrant sounds of traditional percussion. Equally remarkable is the world-renowned Sambalpuri Ikkat handloom, whose exquisite craftsmanship has become a cultural ambassador of Odisha across the globe. Sambalpuri Din also reminds us of our collective responsibility to preserve the language, protect folk traditions, support artisans and inspire the younger generation to embrace their rich cultural heritage. For Parikrama, this is Supriti Mishra, Akashvani Sambalpur.
2: और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। गोरखपुर शहर के विकास में पिछले 23 जुलाई को एक और उपलब्धि जुड़ गई। इस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर को लगभग 429 करोड़ रुपए की लागत से बने 2.65 किलोमीटर लंबे 6 लेन फ्लाईओवर की सौगात दी। गोरखपुर शहर के विकास की दृष्टि से इस फ्लाईओवर को प्रमुख उपलब्धि माना जा रहा है, तो सुनते हैं रिपोर्ट।
3: विकास के पथ पर तेजी से बढ़ रहे गोरखपुर शहर को पहले 6-लेन फ्लाईओवर की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर आवागमन को आसान बनाने का माध्यम है। इसके माध्यम जितने तेज होंगे उतनी ही तीव्र गति से प्रगति होगी। प्रगति से समृद्धि अपने आप आएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत अभियान की संकल्पना को और आगे बढ़ाया जाएगा। लगभग 429 करोड़ रुपए की लागत से तकरीबन 3 साल 4 महीने में ट्रांसपोर्ट नगर और पैडले गंज के बीच बना यह 6-लेन फ्लाईओवर गोरखपुर शहर को सिर्फ जाम से मुक्ति नहीं दिलाएगा, बल्कि विकास की रफ्तार को अर्थव्यवस्था की पटरी पर और तेज करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से शहर में निवेश आकर्षित होगा, नए व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थापित होंगे तथा एमएसएमई, परिवहन, वेयर हाउसिंग, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार गोरखपुर से प्रेमचंद्र गुप्ता।
4: बैक टू दिल्ली। So, Organ Retrieval Banking Organization of AIIMS, New Delhi today felicitated 38 organ, tissue and whole body donor families in New Delhi. We have a detailed report.
5: The event aimed at nurturing students as future ambassadors who will carry the message of organ and tissue donation as well as help dispel prevailing myths, participate in awareness building activities, foster a spirit of collective participation and further strengthens the cause of organ and tissue donation. It featured a training program for doctors and school competitions. Director of AIIMS New Delhi, Professor Nikhil Tandon, said that every year organ and tissue donation gives a new lease on life to patients with end-stage organ failure. He described the decision of donor families to give amid personal grief as a noble deed that grants new life to many and stands as an enduring testament to human compassion. The event brought together donor families, transplant recipients, transplant experts, government officials, police officials and civil society partners. With Nisha and Arzu, Soumya Sharan for Parikrama, Akashwani Delhi.
2: और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं कि खेल की हलचल में क्या है। तो जानते हैं कि ग्लासगो जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वहां पर क्या हो रहा है।
6: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसुन को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन्ह गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी, विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
4: So, at the ongoing Commonwealth Games in Glasgow, Indian boxer Jasmine Limboria today clinched the gold medal in women's 57kg weight division. Jasmine defeated defending champion Michaela Walsh of Northern Ireland 5-0 to back the

0: yellow medal, which is gold. And this marks the second gold for India in the boxing event at the Commonwealth Games. Earlier, another Indian boxer, Preeti Pawar, won a gold in the women's 54 kg category. The reigning Asian champion defeated Scarlett Delgado of Canada 5-0 in the final clash to win India's first gold medal in the boxing event at the Commonwealth Games 2026. So India will have multiple medal opportunities today, with boxing taking center stage, led by Olympic medalist Lovlina Borgohain. She competes in their respective finals, all the other people as well. Indian boxers have marked India's best ever boxing performance at the Commonwealth Games.
1: और अब हम याद करते हैं महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
2: हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी राम नारायण चौधरी को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 1 अगस्त 1895 को राजस्थान में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन का 3 दशकों से भी ज्यादा समय भारत के स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित कर दिया और ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने और राजस्थान में रियासतों से उत्पीड़ित लोगों के लिए 6 साल जेल में बिताए।
3: राम नारायण चौधरी जयपुर के महाराजा कॉलेज में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करते हुए क्रांति दल में शामिल हुए। वो बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष और स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों से आकर्षित हुए थे। 1915 में कलकत्ता में एक छात्र के रूप में गांधी जी के भाषण को सुनने के बाद उनके जीवन ने अहिंसक क्रांति की ओर मोड़ ले लिया।
2: राम नारायण ने विदेशी शिक्षा के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय खुद युवाओं को शिक्षित करने का विकल्प चुना। 1917 में वो जमुना लाल बजाज से जुड़ गए और वर्धा में मारवाड़ी एजुकेशन सोसाइटी में पढ़ाना शुरू कर दिया।
3: गांधी जी के सुझाव पर राम नारायण ने वापस राजस्थान जाकर विजय सिंह पथिक, शोभा लाल गुप्त, माणिक लाल वर्मा, हरिभाई किंकर और भंवर लाल की सहायता से राजस्थान सेवा संघ का गठन किया। राजस्थान सेवा संघ का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के गरीबों का उत्थान करना और क्षेत्र के भूमिहीन श्रमिकों के साथ मिलकर काम करना था।
2: 1920 से राम नारायण और उनकी पत्नी अंजना देवी दोनों ने अपरिग्रह और तपस्या के सिद्धांतों का पालन करना शुरू कर दिया। उन्होंने खादी को जीवन के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया। नमक मार्च राम नारायण के जीवन में वीरता, शक्ति और जिम्मेदारी का नया अनुभव लाया।
1: और अब हम याद कर रहे हैं विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक और उग्र राष्ट्रवादी व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक को। आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की नींव रखने में सहायता की थी। उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1914 में की थी और इसके वे अध्यक्ष रहे तथा 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ लखनऊ समझौता किया, जिसमें आज़ादी के लिए संघर्ष में मुस्लिम एकता का प्रावधान था। तिलक ने प्लेग की बीमारी के दौरान देशवासियों की जो सेवा की उसे भी भुलाया नहीं जा सकता। जैसे ही पुणे में प्लेग के लक्षण प्रकट हुए, उन्होंने हिंदू प्लेग अस्पताल शुरू किया और कई दिन तक इसके लिए धन जुटाने का कार्य किया।
0: Today we are also remembering Neeraj C. Chaudhary. Well, the prolific author, best known for works like The Autobiography of an Unknown Indian, The Continent of Sirks, an essay on the peoples of India. For The Continent of Sirks, he was awarded the prestigious Duff Cooper Memorial Award in 1966. It's a very prestigious award and making him the first and only Indian to bag that.
1: और हिंदी के पहले तिलिस्मी लेखक देवकी नंदन खत्री की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजल की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, गुप्त गोंडा, कटोरा भर और भूतनाथ जैसी रचनाएं की थी। भूतनाथ को उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया था। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा। और अब हम याद कर रहे हैं भगवान दादा को। जी हाँ, भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक रहे हैं। भगवान दादा अपनी प्रसिद्ध सामाजिक और हास्य फिल्म अलबेला के लिए जाने जाते हैं। हिंदी फिल्मों में नृत्य की एक विशेष शैली की शुरुआत करने वाले भगवान दादा ऐसे अलबेला सितारा थे जिनसे महानायक अमिताभ बच्चन सहित आज की पीढ़ी तक के कई कलाकार प्रभावित हैं। तो क्यों ना भगवान दादा का पहले ये डायलॉग सुना जाए।
4: मेरे बाप दादा फ्रांसीसी हुकूमत के जमाने से घोड़ों की देखभाल करते थे। आज मैं वही वर्दी पहन के वही काम कर रहा हूं। जानती है, सरकार के 500 घोड़े मेरे कब्जे में हैं।
5: अरे अपना दिल तो मोटर का दिल है, पेट्रोल हो तो झटपट वरना फटफट। आखिर देख लेना मेरी बात सच निकलेगी, आने दो मालकिन।
6: हाँ हाँ, मैं अभी जाकर मालकिन को बुला लाती हूँ।
7: आपके कब्रों में 5 रुपए मिठाई,
6: 5,000 रुपए की मिठाई।
7: आहिस्ता आहिस्ता दुआ कबूल हो गई, तो दुआ निकल जाएगा।
6: कंजूस है।

0: How great we were remembering Bhagwan Dada. And now, you, listeners, for decades, Indian cinema has romanticized and enshrined the sorrow of Meena Kumari. Well, the tragedy queen. What began as a screen title gradually became a reflection of her life, where the sorrow she portrayed on screen and the heartbreak she endured in real life became one and the same.
1: जी हाँ, इनका पूरा नाम महज़बी बानो था. मीना कुमारी अपना दर्द भरी आवाज़ और भावनात्मक अभिनय के लिए दर्शकों के बीच बहुत प्रसिद्ध रहीं. उनकी साहिब बीबी और गुलाम, पाकीज़ा, परनीता, बहू बेगम और मेरे अपने दिल को छू लेने वाली कलात्मक फिल्में रहीं. तो क्यों ना साहिब बीबी और गुलाम का ये डायलॉग सुना जाए.
2: जब मेरा ब्याह हुआ तो छोटी उम्र थी मेरी. पालकी उठते समय माँ ने कहा, देख बेटी, तन मन से पति सेवा करना, स्वामी ही औरत का देवता है. पर यहाँ आकर देखा, हे मैया, स्वामी घर पर ही नहीं रहते, अब तुम ही बताओ सेवा करूं तो किसकी. सच, अजीब घर है ये, अजीब घर. इतने बड़े घर की बहू बनी मैं, इतना रुपया पैसा, नौकर चाकर जेवर गहना सभी कुछ तो है, पर ये सारे सुख खोखले हैं, भूतनाथ खोखले.
0: Well, the voice, the expressions and everything, the emotions. Now let's listen to a song which she herself has penned.

और मीना कुमारी की पूरी जिंदगी सिनेमा के पर्दे पर भारतीय औरत की ट्रेजेडी को उतारते हुए गुजरी, यहाँ तक कि उन्हें अपनी खुद की निजी जिंदगी में भी ट्रेजेडी का ही रोल निभाना पड़ा। और उनकी हमने एक गाना और निकाला है, वो सुनते हैं।

0: அரங்கிசை நிகழ்ச்சியில் இதுவரை வி எல் நாராயணா அவர்களின் வினை இசை கேட்டோம். ராமையா விட்டல் அவர்கள் மிருதங்கம், கே எம் எஸ் காமாட்சி சுந்தரம் அவர்கள் கஞ்சிரா. சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜயா பாரதி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का युवा अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है. उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है. कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार सदैव ऊंचे रहे और उन्होंने शास्त्रों का आत्मसात किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि मैसूरू भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र है.
2: मैसूरू भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है. यहाँ के मंदिर, यहाँ की परंपराएं और उत्सव, मैसूरू का दशहरा, यहाँ के भव्य महल, इसका संगीत और साहित्य, भारत की विरासत इस शहर के कण कण में रची बसी है.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. श्री मोदी ने कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है.
2: आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है. एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं. इनमें एनर्जी

0: सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवा कचरा निस्तारण स्थल का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अपशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी गई कि 31 जुलाई तक कचरा निस्तारण स्थल पर लगभग 99,00,000 मीट्रिक टन अपशिष्ट का निपटान किया जा चुका है और शेष अपशिष्ट को इस वर्ष 15 अक्टूबर तक निपटाने की उम्मीद है। श्री लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई जाए। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अब तक भारत ने 3 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। मुक्केबाजी में प्रीति पवार ने 54 किलो और जैस्मिन ने 57 किलो में स्वर्ण पदक जीते। 55 किलो में जादुमणि सिंह ने रजत पदक जीता। इसके अलावा सोनम राणा ने पैरा एथलेटिक्स के शॉट पुट F57 वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। शुभम जोयाल को रजत पदक मिला। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेलवा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पदक तालिका में भारत 8 स्वर्ण, 15 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 30 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: நேரம் இப்பொழுது 6:05. ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலியின் 100.1 FM கோல்டு நிகழ்ச்சி நிரல் கேட்கும் முன்,
3: Indian Air Force is inviting applications from eligible boys girls to join as Agniveer Vayu musician. Pre-registered rally planned at Delhi and Bengaluru from 31st August to 9th September 2026. For details visit www.iefrecruitment.edcil.co.in.
4: உண்மையா சொல்ல போனா வெயில் காலம் இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதுக்குள்ள கரண்ட் பில் 7,000 வந்திருக்கு. என் மனைவி ரொம்ப நாளா சோலார் பேனல் போட சொல்றா. அரசு மானியம் கூட தராங்களாம். நான் விசாரிச்ச எல்லாருக்குமே 0 பில் தான் வருது. இந்த தடவை கண்டிப்பா போட வேண்டியதுதான். மின்சாரம் இலவசமா கிடைக்கிறப்ப ஏன் வேணும்னு சொல்லணும். நீங்களும் உடனே போடுங்க. பிரதமரின் சூரிய வீடு இலவச மின்சார திட்டம் இப்போதே PM சூரியகர் .gov.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்யுங்கள்.
2: நிகழ்ச்சி நிரல் இந்த அலைவரிசையில் இனி இடம்பெறவுள்ள நிகழ்ச்சிகள். இந்த அறிவிப்பினை தொடர்ந்து 6:10 விஸ்லேஷன் டெல்லி அஞ்சல், 6:30 இரவு 11:10 மார்க்கெட் மந்த்ரா டெல்லி அஞ்சல், 7:10 திரைகானம், 7:50 செய்தி கதம்பம், 8:00 நாடாளுமன்ற நடவடிக்கைகள் குறித்த வாராந்திர விமர்சனம் ஹிந்தியில் டெல்லி அஞ்சல், 8:15 வார்ப்பு மாப்பிள்ளை நாடகம் எழுதியவர் அகஸ்டோ அவர்கள், நடிப்பு எம் சண்முகம், கே கீதா குமாரி, வி உமா, வி அன்பரசு, பி உமா மகேஸ்வரி, எம் கே விநாயகமூர்த்தி, சாந்தராம், தஞ்சை பீட்டர் ஆகியோர், அமைப்பு கலையன்பன், எஸ் அண்ணாமலை பாண்டியன் ஆகியோர். 9:15 ஸ்பாட்லைட் டெல்லி அஞ்சல், 9:30 தேசிய இலக்கிய ஏடு டெல்லி அஞ்சல், 10:10 விஸ்வதர்பன், 10:20 வேர்ல்ட் நியூஸ் டெல்லி அஞ்சல், 10:30 மேற்கத்திய இசை

0: कुदरती गैस की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आज भी आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और अन्य वैश्विक भू राजनीतिक तनावों ने दिखाया है कि ऊर्जा आपूर्ति में किसी भी तरह का व्यवधान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे हालात का सीधा असर भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों पर पड़ता है। यही कारण है कि ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और घरेलू ऊर्जा संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर लगातार जोर दिया जा रहा है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने समुद्र मंथन योजना शुरू की है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं।
1: समुद्र मंथन योजना के तहत समुद्र में बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाले सिस्मिक यानी भूकंपीय सर्वेक्षण किए जाएंगे। इनसे प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा ताकि संभावित तेल और गैस भंडारों का बेहतर आकलन किया जा सके। इसके अलावा गहरे और अति गहरे समुद्री क्षेत्रों में खोज के लिए ड्रिलिंग को तेज किया जाएगा। सीमांत बेसिनों में वैज्ञानिक ड्रिलिंग भी की जाएगी। योजना में अपतटीय क्षेत्रों से तेल और गैस के उत्पादन तथा उन्हें तट पर लाने के लिए साझा बुनियादी ढांचे के विकास का प्रावधान है। साथ ही एकीकृत ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज जोन स्थापित किया जाएगा ताकि इस क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण और तकनीकी सेवाओं को बढ़ावा मिल सके। समुद्र मंथन केवल अन्वेषण तक सीमित नहीं है, इसमें डिजिटल कार्यक्रम प्रबंधन, नई तकनीकों को अपनाने, क्षमता निर्माण, विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसका उद्देश्य देश में अपतटीय तेल और गैस अन्वेषण तथा उत्पादन के लिए एक मजबूत और एकीकृत व्यवस्था तैयार करना है। इस योजना से 600 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट यानी MMTOE से अधिक नए हाइड्रोकार्बन भंडार जुड़ने की संभावना है। इससे अपतटीय क्षेत्रों में अन्वेषण गतिविधियों को गति मिलेगी, घरेलू तेल और गैस उत्पादन बढ़ेगा, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही अन्वेषण और उत्पादन से जुड़े पूरे क्षेत्र में निवेश बढ़ने, उद्योगों को प्रोत्साहन मिलने और नवाचार के नए अवसर बनने की भी उम्मीद है।
0: श्रोताओं, समुद्र मंथन योजना अपतटीय ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक बदलाव की शुरुआत है। ये पहल देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने, घरेलू तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने तथा ऊर्जा क्षेत्र को अधिक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस निर्णय पर विस्तार से बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है और बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम। हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है यानी समुद्र के अंदर जो भारत की राइट्स और प्रिविलेजेस रहती है, उस जोन के अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, गैस है, ऑयल है, उसका एक्सप्लोरेशन अगर ठीक से किया जाए तो भारत में बहुत कुछ प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक्सप्लोरेशन के लिए और उसके बाद में प्रोडक्शन के लिए बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है जिसका नाम है समुद्र मंथन। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, एक है सीज़मिक डेटा एक्विजिशन। समुद्र में सी बेड के नीचे कहां पर ऑयल मिलने की संभावना ज्यादा है या गैस मिलने की संभावना ज्यादा है, एक बार हमारे पास प्रॉपर जब डेटा आ जाए तो एक्सप्लोरेशन का प्लान ठीक से तैयार किया जा सकता है, और एक बार एक्सप्लोरेशन रेडी होता है देन प्रोडक्शन प्रोग्राम कैन स्टार्ट इन अ मोर साइंटिफिक वे।
0: श्रोताओं, समुद्र मंथन की रूपरेखा जानने के बाद अब ये समझना भी जरूरी है कि ये योजना भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति में इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है और देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं, तेल और गैस के आयात पर निर्भरता तथा बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच समुद्र मंथन किस तरह ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल बनकर उभरता है।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने ऐसे कई घटनाक्रम देखे हैं जिनका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ा। पश्चिम एशिया में तनाव हो या रूस यूक्रेन संघर्ष, ऐसे हालात में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और आपूर्ति दोनों पर असर पड़ता है। इसका प्रभाव भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों पर भी पड़ता है। यही कारण है कि घरेलू ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना और ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना भारत की ऊर्जा नीति की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी संदर्भ में अपतटीय यानी समुद्र के भीतर मौजूद तेल और गैस संसाधनों का महत्व बढ़ जाता है। भारत के पास लगभग 75 लाख वर्ग किलोमीटर का समुद्री क्षेत्र और विशाल विशेष आर्थिक क्षेत्र है जहां ऊर्जा संसाधनों की उल्लेखनीय संभावनाएं मौजूद हैं। लेकिन लंबे समय तक इन क्षेत्रों में खोज और उत्पादन अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पाया। पिछले एक

0: दशक में सरकार ने इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। लगभग पूरे अपतटीय क्षेत्रों को अन्वेषण के लिए खोलना, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी यानी हेल्प लागू करना, ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहन देना, राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी को मजबूत बनाना और डेटा आधारित अन्वेषण को बढ़ावा देना, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं। इन्हीं सुधारों की अगली कड़ी के रूप में समुद्र मंथन सामने आया है। ऊर्जा सुरक्षा किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था की आधारशिला मानी जाती है। घरेलू स्तर पर तेल और गैस का उत्पादन बढ़ने का एक बड़ा आर्थिक लाभ ये भी है कि आयात पर होने वाला खर्च कम किया जा सकता है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी, वैश्विक कीमतों में उतार चढ़ाव का असर कुछ हद तक कम होगा और देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: श्रोताओं, समुद्र मंथन योजना के विभिन्न पहलुओं और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में इसके महत्व को बेहतर ढंग से समझने के लिए आकाशवाणी समाचार ने वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: पेट्रोल डीजल के मामले में हमारे पास रिफाइनिंग कैपेसिटी तो बहुत है, लेकिन उसके लिए जो कच्चा माल चाहिए यानी कि कच्चा तेल जो चाहिए वो कितना ज्यादा आपके पास उपलब्ध है। तो अब इन सारी चीजों को अगर ध्यान में रखते हुए चले, और कहते हैं ना कि समुद्र की गहराई में बहुत कुछ छिपे हुए हैं जो हमें अंदाजा नहीं है, तो इसीलिए जो योजना बनाई गई है समुद्र मंथन की जो 84,000 करोड़ रुपए के, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्से की अगर हम बात करें तो आंकड़े, क्योंकि आप अचानक से कहीं जाकर के खुदाई नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र में ये स्थिति है, इतनी संभावना है, तब जाकर के आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पूंजीगत निवेश होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 जगह जाकर के आपने निवेश कर दिया और 10 जगह में से कहीं कुछ नहीं। तो दो हिस्से, पहला हिस्सा है कि आंकड़े जुटाने के मामले में और दूसरा हिस्सा जो है एक्सप्लोरेशन के मामले में है। लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम 88% कच्चा तेल हम आयात कर रहे हैं, उसमें थोड़ी भी कमी आती है अगर, तो आपको इसका फायदा विदेशी मुद्रा के तौर पे होगा। विदेशी मुद्रा की जो जरूरतें होती हैं उनमें कमी आएगी और वो आपके रुपए पर दबाव को कम करेगा।
1: श्रोताओं, बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं के बीच घरेलू संसाधनों के विकास, आधुनिक तकनीक के उपयोग और दीर्घकालिक योजना के साथ आगे बढ़ना समय की आवश्यकता है। समुद्र मंथन योजना इसी दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम है, जिसका उद्देश्य देश की ऊर्जा क्षमता को नई गति देना और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सशक्त आधार तैयार करना है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक थे अरुणदीप सिंह।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश से भोगापुरम स्थले अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से उद्घाटनम अकरोत्। अथ च आधारभूत संरचना ऊर्जा क्षेत्रयोः 18,000 कोटि रूप्यकाणां प्रकल्पाः अपि शुभारंभिताः। नाथुला द्वारस्य माध्यमेन भारत चीनयोः मध्ये सीमापार व्यापारः पुनः समारब्धः। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शकः अजीत डोवालः लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कारेण सभाजितः। ग्लास्गो नगरे आयोजिते राष्ट्रमंडल क्रीडोत्सवे महिलानां 45-57 किलोग्राम वर्गयोः जैस्मिन लंबोरिया प्रीति पवार इत्येताभ्यां स्वर्ण पदकं विजितम्। अपि च ताइपे ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायाः चरम स्पर्धायां प्रविष्टा भारतस्य 17-वर्षीया क्रीडिका तन्वी शर्मा। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रावोचत् यत् आंध्रप्रदेशः द्रुतगत्या अग्रेसरति। सहैव केन्द्रसर्वकारः विशालस्तरीय आधारभूतसंरचनायाः औद्योगिकविकासस्य च माध्यमेन स्वर्ण आंध्रस्य अथ विकसितभारतस्य संकल्पं पूरयितुं पूर्णतः कटिबद्धो वर्तते। विजयनगरम जनपदस्य भोगपुरम स्थले अल्लूरी सीताराम राजू

0: अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तनस्य उद्घाटनोत्तरं जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री न्यगादीत् यत् विमानपत्तनमार्गोर्जाक्षेत्राणि समेत्य 18,000 कोटिरूप्यकाणां विकासपरियोजनाः केन्द्रराज्ययोः NDA सर्वकारस्य नेतृत्वे राज्यस्य द्रुतगत्या जायमानां प्रगतिं प्रदर्शयति।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमन्त्रिणा एतत् नवीन विमानपत्तनम् आन्ध्रप्रदेशस्य विशेषतः उत्तरान्ध्रक्षेत्रस्य प्रगतेः धावनमार्गः सहैव राज्यस्य यूनाम् आकाङ्क्षाणां क्षेपणमञ्चः इति प्रतिपादितम्। सः अघोषयत् यत् अस्य विमानपत्तनस्य नामकरणं स्वतन्त्रतासेनानिनः अल्लूरी सीतारामराजुवर्यस्य नाम्ना कृतम्, यत् आगामिवंशाय देशभक्तेः समाजसेवायाः च प्रेरणां प्रदास्यति।
1: NDA सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: अत्रावसरे केन्द्रीय नागरिक विमानन मंत्री के मोहन नायडू एतस्य विमानपत्तनस्य उद्घाटनम् ऐतिहासिक कीर्तिमानत्वेन व्यपादिशत्। सहैव तेनोक्तं यत् विमानपत्तनमिदं उत्तरान्ध्रक्षेत्रं विकासस्य, निवेशस्य, उद्यमस्य च मुख्यद्वारत्वेन परिवर्तयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायं मैसूरुनगरे स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक युवकेन्द्रस्य विवेक स्मारकस्य उद्घाटनम् अकरोत्। एतत् स्मारकं 92-18 शततमस्य स्वामी विवेकानन्दस्य मैसूरुनगरीय ऐतिहासिक प्रवासस्य स्मृतिं सञ्जीवयति। तस्मिन् काले सः मैसूरुराज्यस्य दीवान पदभूषितं सर् के शेषाद्रि अय्यर इत्यमुना सह अमिलत्। सहैव शिकागोनगरे आयोजितायां विश्वधर्मसंसदि भागग्रहणाय अमेरिकायात्रायै मैसूरुमहाराज्ञः श्री चामराजेन्द्र वोडियारवर्यात् वित्तीयसाहाय्याम् अलभत। अवसरेऽस्मिन् जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् स्वामी विवेकानन्दः वस्तुतः भारतस्य भावनायाः प्रतीकभूतम् आसीत्। सः सबलं प्रोदीरितवान् यत् देशस्य युवानः वैश्विक विकासं अग्रे वर्धयन्ति।
1: मैसूरु भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है। यहाँ के मंदिर, यहाँ की परंपराएं और उत्सव, मैसूरु का दशहरा, यहाँ के भव्य महल, इसका संगीत और साहित्य, भारत की विरासत इस शहर के कण कण में रची बसी है।
0: उद्घाटनावसरे प्रधानमन्त्रिणे विवेकस्मारकस्य भ्रमणं कारितं, यत्र सः स्वामी विवेकानन्दस्य प्रतिम्नि पुष्पाञ्जलिं समर्पयत्। अनेनैव सः प्रधानमन्त्री स्मारकप्राङ्गणे पादपारोपणमपि अकरोत्। सिक्किम राज्ये स्थितेन नाथुलापास इति माध्यमेन भारत चीनयोः मध्ये सीमापार व्यापारः अद्य प्रातः पुनः प्रारब्धः, येन 6 वर्षाधिकस्य स्थगनस्य अन्तोऽभवत्। अस्य व्यापारस्य पुनः प्रारम्भः भारत चीनयोः द्विपक्षीय सम्बन्धेषु कश्चन सकारात्मकः सङ्केतः वर्तते। अस्माकं संवाददात्रा विज्ञापितं यत् अद्य प्रातः उभयोः देशयोः अधिकारिणः नो मेन्स लैंड इति क्षेत्रे परस्परम् अमिलन्। चीनपक्षस्य नेतृत्वं तिब्बत स्वायत्तक्षेत्रस्य प्रशासनिक प्रमुखैः सहैव तस्य वाणिज्य सीमा व्यापार विभागयोः प्रतिनिधिभिः कृतम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www

0: Good evening and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we do not address stock or company specific queries. You can call us on these numbers 2331-4444. 2371-7117 and 2331-0464. These are Delhi numbers, so listeners do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. Shrotaon, kyunki aaj shanivar hai, to isliye har shanivar ki tarah hum aapke phone calls par puche gaye sawalon ko seedha karyakram mein shamil karenge. आप हमें कॉल कीजिए 2331-4444 2371-7117 और 2331-0464 पर. दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड भी डायल करें, लेकिन ज़रूर याद रखें कि किसी विशेष स्टॉक या कंपनी से जुड़ी जानकारी हम इस कार्यक्रम में आपको नहीं दे पाएंगे. आपके प्रश्नों के उत्तर लेकर स्टूडियो में आमंत्रित हैं अर्थव्यवस्था पर विशेष पत्रकारिता करने वाले वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर जी, कार्यक्रम में आप

0: अभिनंदन।
1: आप दोनों को नमस्कार, धन्यवाद।
0: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
2: थैंक यू प्राची। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस रजिस्टर ओवर 1.6% वीकली गेन। सेंटर रिलीजेस ओवर 1.09 लाख करोड़ रुपीस एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ टैक्स डेवल्यूशन टू स्टेट्स। एंड इंडिया surges over 2.11 lakh crore, marking 15.4% year-on-year increase in July.
0: इस सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में 1.5% से अधिक की तेजी आई। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किश्त जारी की और भारत का जीएसटी संग्रह जुलाई माह में 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक दर्ज किया गया। ये साल दर साल लगभग 15.5% से अधिक की बढ़ोतरी है।
2: And before we begin the program, an important announcement. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: और श्रोताओं, अब जान लेते हैं कि इस पूरे सप्ताह हमारे जो शेयर बाजार हैं उनका रवैया कैसा रहा, उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया। तो श्रोताओं, राष्ट्रीय शेयर बाजार के प्रमुख शेयर सूचकांकों ने इस सप्ताह का समापन मजबूती के साथ किया। फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑटो क्षेत्र में आई तेजी के कारण सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 1.5% से अधिक की बढ़ोतरी हुई। सेंसेक्स 1,258 अंक बढ़कर 78,094 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 387 अंक बढ़कर 24,883 पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में शुक्रवार को भारतीय रुपया मजबूत हुआ, जिससे स्थानीय मुद्रा में मार्च के बाद से सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गई। रुपया हर सप्ताह लगभग 1% बढ़कर 95.38 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
2: Shishir, let's begin with how the markets behaved this week. We are looking at it like Prachi just read, that the markets, both the Sensex and the Nifty, advanced more than 1.6%. What are the factors that have contributed to this rise in the Sensex, in the, both the indices this week?
1: In fact, July has brought very good news for the market as well as for rupee also. I think the performance in the stock market was best among the, in the last 3 months.
2: Yeah.
1: And one of the reason is like we have seen some kind of disruptions, the second round of war. Now we are seeing some kind of, I mean, the war is now slightly on a back foot. I'm not saying that it has stopped.
2: Yeah.
1: But still there are some indications of peace, and that is giving some confidence to the market also. The second factor which is very important is that now the market is already at a very low level. So it is giving an opportunity for the people to make fresh investment, whether we talk about investors from foreign countries or whether we talk about the domestic one. The third one, the two countries which ruled the market in the month of last week of June and first week of July, South Korea and Taiwan, now that phase is over.
2: Yes.
1: So those investors are also coming to India, and these are the three factors which has given a good performance in month of July.
0: Shishir, bazaar ki vivechna jari rakhenge, magar usse pehle hamare pehle caller jud rahe hain. Inka naam hai Premjeet aur ye hain Delhi se. Premjeet, karyakram mein aapka abhinandan, kripya apna sawal poochiye.
3: Ji, aap sare team ka abhinandan, pranam Shishir sahab.
1: Pranam, pranam.
3: Shishir sahab, abhi jo mera prashn hai wo ye hai ki jab मैं चाय के लिए बुलाया गया और उन साहब से उनको चाय दिया, उन्होंने मुझे इंडियन होते हुए पूछा, डू यू नो दिस, सर लैंग्वेज तो समझ में नहीं आ रही है, ये हनुमान जी हैं और इनका गदा है, श्रीलंका का ये एरिया है जहाँ हम लोग सर्वे कर रहे थे, तो वो गोल्ड का और ऑयल का ये सब सर्वे होता
2: है। प्रेम जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका अगर बाजार से जुड़ा हुआ,
3: बाजार से वही मैं आ रहा हूँ, सर्वे का आज के मार्केट पर हम लोगों का, हमारे देश का कितना कंट्रोल है सर?
2: आप किस सर्वे की बात करें, अगर आप थोड़ा सा खुलासा कर सके?
3: कॉमोडिटी की मैडम, जैसे तेल गैस जो समुद्र में निकलती है ना, तो उसके एक सर्वे होती है मैडम जी, पहले जहाजों से, तो हम उन जहाजों पे काम करते थे, तो उस समय वो डाटा आता था, तो वो लोग हम इस स्टोरी को हमसे शेयर करते थे, तो हमारी उत्सुकता शिक्षित साहब से वही जानने में है
1: जी,
3: मैं हमारे पास,
1: हाँ समझ गया प्रेम जी, आप सिस्मिक डेटा की बात कर रहे हैं, अगर आप याद करें

0: तो कल जो कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला किया समुद्र मंथन, उसके दो हिस्से हैं और एक हिस्सा उसमें जो है वो है डेटा के कलेक्शन के ऊपर है और दूसरा डेटा दूसरा जो हिस्सा है वो है आपका एक्सप्लोरेशन को। तो देखिए कहीं भी आप पूंजी लगाते हैं यानी कि आप कोई मशीन लगा रहे हैं, उसके पहले अगर उस जगह की आपको जानकारी नहीं हो तो फिर आपके लिए वो पूंजी जो है वो शायद उतना फ़ायदा आपको नहीं देगी। तो ये जो सर्वे किया जाता है जिसके आधार पर तरह तरह के डेटा हासिल किए जाते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ संभावनाएँ हैं तेल की या गैस की, वो सर्वे काफ़ी अहमियत रखते हैं। और इसी वजह से अगर आप समुद्र मंथन योजना के बारे में देखेंगे तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो डेटा और डेटा एक्विजिशन यानी कि कोई और भी एजेंसी अगर सर्वे कर रही है तो उसका ले सकते हैं। तो सर्वे की बहुत बड़ी भूमिका है, आंकड़ों की बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि उसी के आधार पर आप आगे निवेश की रणनीति बनाते हैं।
1: जी, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। US stocks rose yesterday to finish a wild July for Wall Street as Amazon leaped, Apple sank, and rising oil prices worsened worries about inflation staying high. The S&P 500 climbed 0.7% after veering between gains and losses through the day. The Dow Jones Industrial Average added 0.5% and the Nasdaq Composite rallied 1%. Shishir, again, I would like a comment from you on the way the US markets, through the month, and specifically because just before the month ended, we had the Fed meeting, where they have decided to keep the rates same. And there was also one other, development where the 30-year Treasury bonds, they had hit almost near highs of 2007. So overall, how do you look at the way the markets, US markets were, in the month of July?
0: You rightly mentioned about the Federal Reserve meeting where they kept the interest rate at the same level. Yeah. But one of the key concern, there is a rising inflation. And that inflation is what they call it as the imported inflation, because many of the goods which are coming from various other countries, they are brought into the US at a very high tariff. Because US imposed tariffs on number of countries, and now that is going to impact the inflation number. That is why Federal Reserve has kept the interest rate at the same level, but they are also giving, or they are rather, I would use the word, they are cautioning that there could be some kind of impact on the interest rate. And if it happens, it's not a good news for India, because when the US takes Federal Reserve of US takes a decision on hiking the interest rate, that means the money will flow out from the country.
1: Yes.
0: And that is not a good news for us.
2: Right. और आलोक कुमार हमें ज्वाइन कर रहे हैं श्रोताओं। आलोक जी, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: हेलो
2: जी आलोक जी, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: हाँ मैडम, गुड इवनिंग।
2: गुड इवनिंग।
3: हाँ मैडम, मेरा सवाल ये है ना कि जैसे शेयर मार्केट में जैसे कोई पर्सन आता है तो मुझे थोड़ा जानकारी चाहिए थी कि मतलब मैंने ज्यादा बेस्ट किसी पर्सन के लिए F&O सेगमेंट हो सकता है या फिर डेरिवेटिव जो कैश सेगमेंट होता है जिसमें डिलीवरी लेते हैं, या वो ज्यादा बेस्ट है, मतलब क्योंकि मैं नया था तो
0: आलोक जी, आलोक जी एक मिनट में रोकूंगा, आप व्यक्तिगत निवेशक हैं या कोई?
3: आप व्यक्तिगत निवेशक हूँ मैं, पर्सनल इंडिविजुअल हूँ मैं, और क्योंकि मैंने अपना लॉस कर दिया था F&O सेगमेंट में। हालांकि बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे पास डीमैट ओपन कीजिए, हम आपको प्रॉफिट करा के देंगे F&O सेगमेंट में, तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट करा के देंगे।
2: और ये बहुत ही आपने बेसिक, कोई भी जो शिशिर नया निवेशक है उसके मन में यही सवाल होता है कि बाजार में इतनी अनसर्टिनिटीज होती हैं और इतना डर लगता है, इतना भय लगता है कि हमारी जो बचत है, हमारी जो जमा पूंजी है वो कहीं व्यर्थ ना हो जाए। तो आपसे हम अपने बाकी श्रोताओं के भी उपलक्ष में जानना चाहेंगे, और आलोक जी तो है ही है, आप बताइए कि किस तरीके से निवेशक बाजार में घुसे, वो SIP अच्छा होगा नए निवेशकों के लिए, वो F&O डेरिवेटिव मार्केट्स अच्छा होगा, या कैसे?
0: देखिए सेबी के रिपोर्ट के हिसाब से 10 में से 9 निवेशकों ने F&O में पैसा गंवाया है, और पैसा अच्छा खासा गंवाया है। क्यों गंवाया है? क्योंकि F&O या जिसको आप डेरिवेटिव मार्केट भी कह लीजिए, ये बाजार ऐसा है जो कि छोटे निवेशकों के लिए नहीं है, ये बड़े और बहुत ही परिपक्व निवेशक के लिए है, और ये दरअसल नकदी बाजार से सुरक्षा मुहैया कराने का एक माध्यम है। आप नए हैं, आप एक व्यक्तिगत निवेशक हैं, आप नकदी बाजार में जाइए, आप म्यूचुअल फंड में इस्तेमाल करिए, जहाँ पर आपके लिए आपने पैसे दिए, आप

0: शेयर खरीदे, डिलीवरी ली, अगले कुछ समय में जब भी आप चाहें आप उसको बेचिए, आप अपना पैसा लीजिए, घाटा मुनाफा जो भी है उस हिसाब से आप कर का भुगतान कीजिए, कहानी खत्म है। आप यदि कुछ ज़्यादा बड़े सौदों में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा जिसकी आपको समझ नहीं है। दूसरी बात, जो एफएनओ मार्केट है वो क्यों लोगों को खींचता है, इसलिए खींचता है क्योंकि लोगों को लगता है मार्जिन पे करेंगे, यानी कि 100 रुपए के माल के लिए 5 रुपए पे करेंगे और हम सौदा कर सकते हैं। लेकिन वो 95 रुपए आप नहीं भी पे कर रहे हैं लेकिन आपके ऊपर वो देनदारी बन जाती है और वो 5 रुपया दे करके आप सोचते हैं कि हमने बड़ा सौदा कर लिया है, वो उचित नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक परिपक्व निवेशक हैं, आपको बहुत अच्छी बाजार की समझ है, थोड़ा सा हिस्सा आप उसमें लगा सकते हैं। लेकिन आप अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, एक आम निवेशक हैं, तो आपके लिए नगद बाजार एक बेहतर विकल्प।
1: लेट्स गो ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉल, अगेन कमिंग इन फ्रॉम दिल्ली, इट्स टिग्रिशस विद अस फ्रॉम दिल्ली। आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछे।
2: हेलो जी।
1: जी हाँ जी, नमस्ते, अपना सवाल पूछे। जी सवाल पूछे।
2: बैंक में एक जानकारी दी थी कि 50,000 रुपए जमा करके एक एफडी बनती है 444 दिन के लिए, तो ऐसा कोई होता है प्लान?
0: अलग अलग बैंकों की अलग अलग योजनाएं होती हैं कुछ खास समय के लिए, जैसे वो 555 दिन या 444 दिन की योजनाएं बनाते हैं। और अगर जो भी एक जिसको कहें कि हमारे जो 12 सरकारी बैंक हैं या 22 निजी बैंक हैं या फिर विदेशी बैंक हैं, वो इस तरह की योजना लेकर के आते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, याद रखिए कोई असंगठित क्षेत्र से आकर के आपको कहता है कि आप 444 दिन के लिए आप पैसे लगा दो और हम आपको 12% और 15% का ब्याज देंगे, भूल के मत जाइएगा, ब्याज तो छोड़ दीजिए, मूल भी डूब जाएगा।
1: पर शिशिर यहाँ जैसे उन्होंने कहा कि 50,000, तो जहां तक हमारी जानकारी कोई ऐसे कोई खास
0: नहीं, कोई सीमा नहीं होती है। आप इसमें 444 दिन, जैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो कई सरकारी बैंक जो है वो जमा के लिए विशेष अभियान चलाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि आप जब जमा से पैसे आएंगे तभी तो आप कर्ज दे पाएंगे और कर्ज देने की रफ्तार अभी ज्यादा है, जमा कम आ रहे हैं, तो इसमें एक खास समय के लिए इस तरह के, जैसे कहते ना, आपको याद होगा कि एक खास कंपनी का जो जूता चप्पल होता था वो 99 पे आकर टिक जाता था।
1: बिल्कुल।
0: तो ये हमें कहीं ना कहीं आकर्षित करता है कि अच्छा 333, 444, 555, 666, तो ऐसे जो है ये आपको आकर्षित करने के लिए है। बस वही मैंने कहा कि एक ध्यान रखिए कि आपको कौन आपके लिए प्रस्ताव दे रहा है, एक नियमित सरकारी बैंक या निजी बैंक या विदेशी बैंक या कोई एक असंगठित संगठन, उससे दूर रहें।
1: शिशिर जी, एक और बहुत ही आधारभूत सवाल मैं आपसे पूछूंगी जो अमूमन सभी निवेशकों के मन में और खास करके हमारे जो मार्केट मंत्र के जो श्रोता है उनके मन में रहता है, वो ये कि अपना पोर्टफोलियो डिविजन कैसे करें, कितने प्रतिशत, अगर हमारे मान लीजिए मेरे पास 500 रुपए हैं और हम मैं उसमें से कितना पैसा कहाँ पर किस तरीके से डिवाइड करूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं अपना एक आउटपुट उस का निकाल पाऊं। हम आगे बढ़ेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले अमित झा हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिल्ली से। अमित झा, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
0: अमित जी सवाल पूछिए।
1: अमित जी आप हमें सुन पा रहे हैं?
2: हेलो
0: जी, सवाल पूछिए।
2: हाँ नमस्कार सभी को।
0: नमस्कार
2: सिन्हा सर, से मेरा प्रश्न ये सर कि जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में हम अच्छे स्थिति में तो है सर। हेलो।
0: हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं।
2: लेकिन सर हम उनके जो टेलीकॉम के कंपोनेंट है अभी भी हम चाइना से भारी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, जबकि सरकार मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए गुजरात है या मध्य प्रदेश है ऐसे जगह पे उन्होंने प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश कर रहे हैं, लेकिन कब तक हम मैन्युफैक्चरिंग के इक्विपमेंट को अपने ही देश में उत्पादन करके और पूरे हैंड असेंबलिंग करके हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आएंगे? धन्यवाद।
0: अमित जी देखिए, अभी दो जगहों पर सेमीकंडक्टर, दो या तीन जगहों पर सेमीकंडक्टर का जो है वो प्रोडक्शन शुरू भी हो गया है और हमें उम्मीद है कि अगले 2 से 3 वर्षों में हम काफ़ी अच्छी स्थिति में होंगे। देखिए अभी जब ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू हुआ और जिसके बाद मोबाइल हैंडसेट एक से एक बनने लगे हैं, हमारे यहाँ बनना नहीं कहना चाहिए, असेंबलिंग होने लगे, तो वहाँ पर जो कल पुर्जे हैं, हर तरह के कल पुर्जे आप नहीं बना पाएंगे, उसकी एक विशिष्टता होती है, उसकी पेटेंट होती है। जैसे मैं आपको दवा का भी उदाहरण दूं कि हम दवा के मामले में दुनिया के लिए फार्मेसी का हब कहे जाते हैं, लेकिन अभी भी हमें API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो कि कच्चा माल है दवा का, वो हमें आयात करना पड़ता है और निर्भरता कम हुई है लेकिन अभी भी आयात करना पड़ता है। तो

0: उम्मीद करनी चाहिए कि अगले 2 से 3 वर्षों के दौरान जो है हम इनमें से कई कल पुर्जे और खासतौर पे जो चिप की बात है वो हम अपने यहाँ उत्पादन करना शुरू कर पाएंगे। उसके ऊपर हमारी जो आयात पर निर्भरता है वो खत्म होगी।
1: और हमारे साथ अनुभा एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, इनका नाम है SPS जैन और ये है नोएडा से। बहुत बहुत अभिनंदन आपका कार्यक्रम में महोदय, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार जी।
1: नमस्कार।
2: ये अभी मैं सुन रहा था किसी व्यक्ति ने 444 दिन का एक डिपॉजिट स्कीम के नाम लिया था, तो मैं खास बैंक का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन कहिए तो मैं बता देता हूँ, स्टेट बैंक का ये मैं काफी डिपॉजिट रखा हुआ है। आई एम ए सुपर सीनियर, मुझे 7.05 दे रहे हैं और काफी। और दूसरी स्कीम ये SBI का कंप्लीट टोटल सेफ स्कीम है,

0: SBI का कंप्लीट टोटल सेफ स्कीम है, बस यही मैं आपको क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा था।
1: चलिए, आपने ये जानकारी शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं।
2: अब इनका सवाल जो था, चूंकि जैन साहब ने हमारे लिए जो एक एक धर्म संकट होता ना कार्यक्रम की, एक ऐसी प्रस्तावना है कि हम किसी संस्था का नाम नहीं लेते हैं, तो चलिए जैन साहब ने हमारा धर्म संकट दूर किया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका मूल सवाल था कि कितना पैसा कहाँ रखें,
3: प्रतिशत,
2: हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ मैं। तो जैसे होता ना कि एक पहला फॉर्मूला जो है वो 60-20-20 का है। 60-20-20 क्या होता है कि 60% आप खर्च करते हैं, 20% आप बैंक में रखते हैं ताकि वो एक तरीके से आपको सुरक्षा दे, और 20% आप कहीं ना कहीं निवेश करते हैं। आप कहेंगे बैंक में क्यों रखते हैं और निवेश अलग, दोनों के लिए अलग क्यों रखा गया? क्योंकि बैंक आपके लिए क्या है ना कि आपके लिए एक डिमांड है, आपको जब पैसे की जरूरत है आप ATM से निकालते हैं, जब कोई कहता है ना कि परेशानी और विपदा बता के नहीं आती, तो उसके लिए आपके पास एक ऐसी रकम होनी चाहिए जो एनी टाइम मनी, इसीलिए हम ATM कहते हैं। तीसरा जो 20% है, अब उसकी हिस्सेदारी पे आ जाए, अब उसमें क्या होता है कि आपकी उम्र क्या है, अगर आप मान लीजिए कि 30 से 40 साल से कम उम्र के हैं तो आप उसका एक बड़ा हिस्सा, जिसे मैं कहूंगा कि 70% या 60% तक हिस्सा आप शेयर बाजार में लगा सकते हैं, बाकी जो 40% है उसमें से 10% आप सोने में लगाएं और बाकी जो 30% है वो म्यूचुअल फंड में लगाएं। फिर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाए तो फिर आप 60 को घटाते जाएं, वो आप 50 पे लाएं, 40 पे लाएं, और फिर वहां पर जो आपका डेट इंस्ट्रूमेंट है उसमें आप बढ़ाते जाएं, क्योंकि वो सुरक्षा है। क्योंकि एक उम्र के बाद हमारी कमाई नहीं होती है और हमें नियमित आय की जरूरत है, तो वहां पर हम जाएं, जैसे बैंकों के फिक्स डिपॉजिट है या डाकघर की बचत योजनाएं हैं उनमें हम लगाएं, जिसमें हमारा मूल और ब्याज दोनों सुरक्षित रहे। बैंक और डाकघर में एक बड़ा अंतर ये हो जाता है कि डाकघर में जो आप पैसा रखते हैं उसमें मूल और ब्याज दोनों की गारंटी सरकार की होती है, बैंक में जो आप रखते हैं वहां पर बैंक की गारंटी होती है कि आपको वापस करेंगे, लेकिन अगर बैंक बंद हो जाए तो आपको 5 लाख रुपए तक ही जो है वो प्रति खाते आपको मिल पाते हैं। तो एक हिस्सा अगर आप डाकघर की बचत योजना में रखते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है।
1: और इस बीच वी हैव आवर नेक्स्ट कॉलर ऑनलाइन विद अस, शंकर इज कॉलिंग अस फ्रॉम भोपाल। शंकर, वेलकम टू मार्केट मंत्र एंड प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
4: सर नमस्ते मार्केट मंत्र टीम को।
1: जी,
4: इन रीसेंट टाइम्स वी हैव सीन रुपीज हैव डिप्रिशिएटेड क्वाइट अ लॉट एंड द बैंक डिपॉजिट रेट्स आर नॉट कवरिंग द इन्फ्लेशन। Is there any way or any other option available for retail investor like us who can invest probably in dollar deposit under LRS scheme? LRS scheme mein kya dollar deposit hum log ne available hai Indian resident Indian taxpayer ke liye, because $2,500 bahar bhej sakte hain but share khareed sakte hain kya, deposit hum de sakte hain kya, so that we get the benefit of that lower interest rate but dollar appreciation।
2: देखिए
4: हमें सिर्फ म्यूचुअल फंड में जाना पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है क्या? थैंक यू।
2: नहीं देखिए, ऐसा है ना कि आप बाहर जो पैसा भेजते हैं उसमें बहुत सारे के जो है वो तकनीकी जो कहते हैं कि एक ज़रूरतें होती है वो पूरी करनी होती है, और दूसरी बात है कि आपके पास यहाँ पर भी अगर आप, जैसे मैं अभी प्रोपोर्शन की बात कर रहा था कि कहाँ कहाँ पर कितना रखें, तो अगर आप अपने डाइवर्सिफाइड कर लेते हैं पोर्टफोलियो को, जैसे आपने आपकी उम्र अगर मान लीजिए कि 50 वर्ष के है, एक निश्चित हिस्सा आप शेयर में, एक निश्चित हिस्सा म्यूचुअल फंड में, एक निश्चित हिस्सा जो है वो बैंक में, और एक निश्चित हिस्सा जो है अगर आप डाकघर की बचत योजनाओं में रखते हैं, तो आप ये जो रिटर्न है ना उसको भले ही ये ना कहें कि हम कहें कि 10% हो जाएगा। दूसरी बात आप ये भी याद रखिए कि बाहर के देशों में ब्याज दर इतना भी ज़्यादा नहीं है जो कि आपकी अपनी जो महंगाई दर है उससे वो उसका सामना कर सके। आप ये कर सकते हैं कि डॉलर, तो डॉलर का अगर आप जो बढ़ोतरी का फ़ायदा उठाने की बात करेंगे तो वो आप US में ही रख सकते हैं, और US की जो नियमन है, US की जो व्यवस्था है उसके लिए आपको बहुत सारे जो तकनीकी पेचीदगियाँ हैं उनको आपको पार करना पड़ेगा। तो मेरा आपसे सुझाव इतना ही है कि आप उसको डाइवर्सिफाई कर लीजिए, तो आपके लिए ब्याज दर की जो आप बात कर रहे हैं कि कम मिलता है वो आपको, आप देखेंगे कि आपका बढ़ा है।
1: अन्य खबरों में श्रोताओं, केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किश्त जारी की है। ये राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किश्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। मंत्रालय द्वारा जारी राज्यवार विवरण के अनुसार उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 19

0: 1208 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके बाद बिहार को 10845 करोड़ और मध्य प्रदेश को 8010 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और दिल्ली से हम जोड़ रहे हैं राजेंद्र जी को। राजेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
1: सवाल मेरा हटके है थोड़ा
0: जी।
1: आज के जो विशेषज्ञ हैं ये मिस्टर शिशिर सिन्हा है
2: जी,
0: जी।
1: तो शिशिर सिन्हा साहब जर्नलिस्ट हैं क्या, मुझे बताएंगे, क्योंकि ये आकाशवाणी पे इंटरव्यू भी करते हैं।
2: आप सवाल पूछे, मेरा जो परिचय है मेरे ख्याल से प्राची ने शुरू में दे दिया था।
0: पत्रकार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और आर्थिक बीच की पत्रकारिता करते हैं। कृपया अपना सवाल पूछिए।
1: पढ़ नहीं पाता, देख नहीं पाता हूँ, इसलिए अपनी जानकारी के लिए मैं जानना चाहता था। शुक्रिया
3: जी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैव रिड्यूस्ड द प्राइस ऑफ अ 19 किलोग्राम कमर्शियल एलपीजी फ्रॉम टुडे। आफ्टर द प्राइस कट, द न्यू प्राइस ऑफ commercial LPG cylinder in Delhi will be 2,738 rupees. The price of a 19 kilogram commercial LPG cylinder in Kolkata is 2,872 rupees and 50 paisa, while in Mumbai it will be 2,691 rupees and 50 paisa, and in Chennai it is going to be 2,906 rupees. According to the Indian Oil Corporation Limited, the new prices for commercial LPG cylinders came into effect from today. This decision will provide relief to restaurants, dhabas, hotels and those involved in the food and beverage business.
0: और पुणे से हमारे साथ कुमार जुड़ रहे हैं। कुमार जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछें।
4: जी गुड इवनिंग, नमस्कार।
2: नमस्कार
4: जी, मेरा सवाल ये है कि अगर हम कोई नए पर्सन हैं और अगर हमको अच्छी तरह से सीखना है शेयर मार्केट में निवेश किस तरह से करें, तो हम कहाँ से सीख सकते हैं, कौन सा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम सीख सके, जैसे कि डेरिवेटिव सेगमेंट हो या फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट हो या डिलीवरी हो या इंट्राडे हो, ये हम किस तरह से सीख सकते हैं, अच्छा कोई प्लेटफॉर्म जहाँ से हम अच्छी तरह से सीख के एक्सपर्ट हो जाए।
2: देखिए कुमार जी, एक्सपर्ट बनने में तो समय लगता है, और दूसरी बात यह कि आप जैसे ही गूगल करेंगे आपके सामने इतने लिंक आ जाएंगे, इतने सारे इन्फ्लुएंसर और जो सो कॉल्ड हमारे एक्सपर्ट हैं वो आ जाएंगे, कि आपके लिए हो सकता है कि सही और गलत के बीच अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो मेरा आपसे सुझाव ये है कि कुछ पहले क्या होता है बेसिक, जिसको कहते हैं ना क ख ग ABC सीखना हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा और सस्ता और बिल्कुल मुफ्त में, जिसको मैं कहूँ सस्ता नहीं कहना चाहिए, वो जैसे BSE की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पर भी कई तरीके के इन्वेस्टर एजुकेशन के जो है वहाँ पे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। SEBI की वेबसाइट पे जाकर के इन्वेस्टर मटेरियल्स आप देख सकते हैं, उनको पहले पढ़िए, उनको समझिए कि आप सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है। अगर आप बेसिक समझ जाएंगे और फिर उसके बाद आप जो इतने भी हमारे जो बिजनेस चैनल्स हैं या बिजनेस अखबार है उनको नियमित तौर पर पढ़िए, तो आपकी जब समझ बेहतर होगी तो आप इस मामले में आगे बढ़ सकते हैं। विशेषज्ञ बनने की बात है, कितना समय लगेगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं है।
0: और सबसे बड़ी बात कुमार जी कि आप मार्केट मंत्र कार्यक्रम के साथ रोजाना जुड़े रहिए, ताकि आपको रोजाना नई नई अपडेट्स मार्केट्स के मिलती रहे और आप इसी तरीके से सीखते रहें।
3: या दैट्स राइट प्राचीन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST कलेक्शंस इन द लास्ट मंथ विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट राइज टू 2,11,205 करोड़ रुपीस, मार्किंग अ 15.4% year-on-year increase from 1,83,065 crore rupees in July 2025. According to the provisional data released by the Finance Ministry, gross domestic revenue stood at 1,44,695 crores, up 10.1% from a year ago. GST collections from imports surged 28.8% to 66,511 crore rupees, providing a boost to the overall monthly mop-up. Moving on, the Income Tax Department today said that over 5.9 crore income tax returns were filed for the assessment year 2026-27 by July 31st, 2026. Thanking taxpayers in a social media post, the department said that their trust and timely compliance provide the energy that fuels India's growth.
0: दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। सभी पात्र महिलाएं dly.delhi.gov.in पर अपना पंजीकरण करा सकती हैं। दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 21 से 60 आयु वर्ग की 11 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये की

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का युवा अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश का युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है।
1: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की। ये राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक किस्त के अतिरिक्त है।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किश्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों को लागू करने में श्री डोभाल की प्रमुख भूमिका रही है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवां कचरा निस्तारण स्थल केंद्र का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अवशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। श्री मनोहर लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अवशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई जाए। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर शुरू हो गया। इसके साथ ही 6 वर्ष से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में सकारात्मक संकेत है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अब तक भारत ने 3 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। महिला मुक्केबाजी में प्रीति पवार और जैस्मिन ने स्वर्ण पदक जीते। जदुमणि सिंह ने रजत पदक जीता। सोनम राणा ने पैरा एथलेटिक्स के शॉटपुट F57 वर्ग में स्वर्ण और शुभम ज्वाल ने रजत पदक जीता। ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 8 स्वर्ण 15 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 30 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: எஃப்எம் கோல்ட் அலைவரிசையில் இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது நாடாளுமன்ற நடவடிக்கைகள் குறித்த வாராந்திர விமர்சனம் ஹிந்தியில் டெல்லி அஞ்சல்.
1: ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का यह दूसरा सप्ताह था। यह सप्ताह कामकाज के लिहाज से मिला जुला रहा। इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि दोनों सदनों ने लंबी चर्चा के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी प्रदान कर दी। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। सदन ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। इस कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इस हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास और 50,00,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। सदन की बैठक 2 बजे शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शाम 5 बजे बैठक पुनः शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। सदन में हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक बार बार बाधित हुई और 4 बार के स्थगन के बाद शाम करीब 5:15 की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सदन में हंगामा जारी रखा और बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर यही मुद्दा उठाया और मांग की कि गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में बयान दें। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा

चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। सदन में हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक शाम 5:15 बजे तक और पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। मंगलवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक सरकार के विद्यार्थियों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार जेन ज़ी का भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। विधेयक पर देर रात तक चर्चा हुई जिसमें विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया, चर्चा अधूरी रही। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। वे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामे के कारण बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और फिर शून्यकाल शुरू करवाया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। सभापति ने हंगामा जारी रहने पर करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने फिर से गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उपसभापति ने सदस्यों से कार्यवाही चलने देने की अपील की लेकिन सदन में व्यवस्था न बनते देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट पेपर लीक के पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराह्न 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने

नीट पेपर लीक के खिलाफ विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वह माफी मांगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य, जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। उसी दिन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी सदन में पेश किया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण भोजनावकाश से पहले सदन की कार्यवाही बाधित रही। भोजनावकाश के बाद सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन में विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट यानी बहिर्गमन कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टिकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वह सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे प्राप्त होना चाहिए। विधेयक पारित होने के बाद कुछ सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के शोरगोल के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। हंगामे के कारण कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और उसके बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद बैठक शुरू होने पर सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। उच्च सदन ने एक दिन पहले ही विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य, व्यक्ति या विचारधारा के खिलाफ नहीं है। इससे पहले द्रमुक सांसदों ने विधेयक का विरोध किया। उधर राज्यसभा में भी हंगामा जारी रहा। शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा किया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदस्यों ने शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजनावकाश के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल ही में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। विधेयक के समर्थन में भाजपा के ब्रिजलाल ने कहा कि विधेयक यह प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष एसआईटी का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को मात्र 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। जदयू के संजय झा ने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह से बढ़ रहा है उसका एक अहम कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास थी, तब इस तरह प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। विधेयक पर हुई लंबी चर्चा के बाद विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री सिंह ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा

0: எஃப்எம் கோல்டு அலைவரிசையில் இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखिए समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी, केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। 7 भारतीय मुक्केबाज आज फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
3: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।
3: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा

0: नई यूनिवर्सिटीज बनी है।
1: पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं,
0: 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई,
1: 9 नए IIM,
0: 7 नई IIT और 13 नए MBBS स्थापित किए गए हैं।
1: आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
2: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया।

0: 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
1: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
0: मुझे पूरा विश्वास है आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117,85,00,000 रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
2: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 44,55,00,000 रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किस्त के रूप में 379,35,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500,00,000 रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 193,95,00,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किस्त के रूप में 500,00,000 रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 500,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
3: भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं।
1: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत

0: समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
1: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटकपुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरलम में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेल गाडो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
3: काफी अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो काफी खुश। अगला कंपटीशन से और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल ले आऊंगा। मेडल मैं मेरा अंकल को दे करूंगा और BFI को, साई को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे करूंगा।
2: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया, जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
0: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5,000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा सड़क संपर्क बाधित होने से प्रभावित यात्रियों को राहत देने और कश्मीर तथा जम्मू के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Swami Vivekanand Cultural Youth Centre in Mysuru, credits Indian youth for progress in science, technology and sports. Prime Minister launches development projects worth 18,000 crore rupees in Andhra Pradesh. Centre approves advance release of over 2,000 crore rupees as assistance to flood-affected states. India and China resume cross-border trade through Nathula Pass in Sikkim. Flood fury continues in Odisha, 6 people killed in Kerala as incessant rain causes widespread havoc. And in Commonwealth Games, boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar win gold medals. Para-athlete Soman Rana bags gold in men's shot put F57. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the areas of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artefacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre Vivek Smarak in Mysuru today. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekananda's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building.
5: Swami Vivekananda ji युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
4: Mr. Modi further said the capabilities of our youth has transformed India into the second largest mobile phone market. New strides are being made in semiconductor manufacturing, innovations and in private sector space missions. Moreover, Mr. Modi underscored the progress achieved in the last 12 years in the field of education by establishing new universities and colleges, including ITIs, IIMs, IITs, AIMS and increasing medical seats as well.
5: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
4: Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar, Governor Thavarchand Gehlot and the President of Ramakrishna Math, Srimad Swami Gautamanandji Maharaj were present on the occasion. Earlier in the day, Prime Minister Modi launched development projects worth about 18,000 crore rupees, including airport, road and energy infrastructure,

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। ये पत्रिका शब्दों की उस यात्रा का हिस्सा है जो हमारी भाषाओं, हमारे साहित्यकारों और हमारी राष्ट्रीय चेतना को आपस में जोड़ती चलती है। आज के अंक में हम काव्य से लेकर गद्य तक, वीरता से लेकर भाषा एकता तक और वर्तमान से लेकर स्मृतियों तक एक संश्लिष्ट यात्रा करेंगे। करगिल की चोटियां आज भी उस अदम्य साहस की गवाह हैं, जब हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि की रक्षा की थी। करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज के संपादकीय में हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक काव्यांजलि, काव्य अनुगूंज उस विजय की। विजय केवल युद्ध भूमि में प्राप्त होने वाला एक परिणाम नहीं, बल्कि राष्ट्र के स्वाभिमान, साहस और त्याग का अमर घोष है। करगिल विजय दिवस हमें उन वीर सैनिकों की अदम्य वीरता का स्मरण कराता है जिन्होंने दुर्गम हिम शिखरों पर अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की अस्मिता की रक्षा की। युद्ध के इतिहास में तलवारें और बंदूकें विजय का मार्ग प्रशस्त करती हैं, किंतु विजय को अमरत्व शब्द देते हैं। यही कारण है कि भारतीय काव्यधारा में वीर रस केवल उत्साह का संचार नहीं करता, बल्कि राष्ट्र चेतना को जागृत भी करता है। कवियों ने समय समय पर अपनी लेखनी से उन वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है जिनके बलिदान ने स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा की। ये सभी ज्ञात अज्ञात सैनिकों के प्रति राष्ट्र की सामूहिक कृतज्ञता का स्वर है जो हर मौसम, हर परिस्थिति और हर चुनौती के बीच हमारी सुरक्षा के प्रहरी बने खड़े हैं। देश के सैनिकों से कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, फतह तिरंग आज क्यों न फिर गड़े, जगत प्रसिद्ध शूर सिद्ध तुम सभी, जवान हिंद के अडिग रहो डटे, न जब तलक निशान शत्रु का हटे, हजार शीश एक ठौर पर कटे, जमीन रक्त रुंड मुंड से पटे, तजो न सूचिकाग्र भूमि भाग भी। युद्धरत सीमाओं पर सैनिकों को विदा करने का भाव दर्ज करते हुए कवि आमिर हमजा ने लिखा है, चौतरफा गूंजते सायरन के बीच जंग में जाते एक हथियार बंद सिपाही को सरेराह गले लगाने वाली स्त्री, जो उसकी माँ हो सकती है या कि बहन, प्रेमिका हो सकती है या कि दोस्त या कि फिर पत्नी, उससे बेहतर भला कौन जान सकता है कि हर अलविदा एक यात्रा की समाप्ति है। इसी तरह एक

और बेहद भावपूर्ण कविता की इन पंक्तियों में, जिनका अनुवाद किया है रमेश कौशिक ने, कवि अलेक्जेंडर प्रोकोफ्येव कहते हैं, किंतु सैनिक क्रांतिकारी चीखता है, मर नहीं सकता कभी मैं नहीं अब तक मरा हूं, मैं मरूंगा भी नहीं। तभी थर्राहट हुई, दीवार जो घेरे हुए थी उसमें दरारें पड़ गईं और सैनिक के हृदय से सेब तरु की शाख फूटी। फिर बड़ी हो वो खुशी से झूमती है मकबरे पर और गुलाबी श्वेत फल उस पर गिराती है। सैनिक के हृदय की शिरा अब तक धड़कती है। इसी क्रम में एक सशक्त भोजपुरी गीतकार और कवि राम जियावन दास बावला ने लिखा, करगिल न कुल कश्मीर छोड़ भागू, बापू क हमरे जगीर छोड़ भागू, भाई समझ के जुगवली बहुत हम, आगी लगवले मड़ैया में, छोड़त न बच्चू लड़ैया में, कसके कमरिया अखाड़े जवनवा, उमड़ल बा भीर जस बरसे सवनवा, के बावला मति मरले बा तोहरी, डाकेले ताती तलैया में, छोड़ब न बच्चू लड़ैया में। और हमारे समय के बहुत बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर ने वीर सैनिकों की प्रशस्ति में कहा, जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो जय हिंदुस्तान, हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्र के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरणी के, छांह सभी को देते हैं, वीर प्रसू माँ की आंखों के, हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं, तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान।

0: वीरता की अनुगूंज हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र केवल भूमि से नहीं बल्कि उसकी विविधता में एकता से बनता है, और इस एकता का सबसे सुंदर माध्यम है भाषा। भारत जैसे बहुभाषी देश में हर भाषा, हर बोली एक सेतु का काम करती है, जो हमें एक दूसरे से और राष्ट्र की सामूहिक चेतना से जोड़ती है। इसी विचार पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति, भाषाओं का सेतु, राष्ट्र का स्वर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कोंकणी मराठी साहित्यकार श्री दामोदर मावजो इस विषय पर कहते हैं,
1: भाषा एवं साहित्य अपनी संस्कृति की महत्वपूर्ण पहचान होती है। कोई भी भाषा हो, हमारे विविधताओं से भरे भारत देश की ज्यादातर भाषाओं में वाचन, लेखन, संभाषण जारी रखकर भाषा वृद्धि तथा समाज समृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में वाचन, लेखन, संभाषण जारी रखना चाहिए। भाषा राष्ट्रीय एकात्मता सबल और संपन्न हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है।
0: स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी पणजी। इसी विचार बिंदु को आगे बढ़ा रहे हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर हितेंद्र मिश्र।
2: भाषाएं संवाद के लिए एक उपयोगी टूल्स के रूप में काम करती हैं, लेकिन केवल टूल्स ही नहीं होती, इनके साथ संस्कृति, समाज, लोगों के अपने जुड़ाव, लोगों की अपनी परंपराएं, लोगों के अपना अस्तित्व, सब कुछ का जुड़ा हुआ होता है। इसलिए भाषाएं जो जोड़ती हैं, जुड़िया काम करती हैं, वो केवल भाषाई आधार पर ही नहीं करती हैं, बल्कि वो सांस्कृतिक, सामाजिक सभी आधारों पर लोगों को जोड़ती हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन में जो स्वतंत्रता आंदोलन की व्यापकता थी, जो उसे विस्तार मिला, जो उसे प्रचार प्रसार मिला, उस प्रचार प्रसार में भाषा की भूमिका सबसे अधिक केंद्रीय और अग्रणी भूमिका है। इस रूप में हम भाषा को देखते हैं और बस एक कह सकते हैं कि भारत में जो भाषाई वैविध्य है, इस भाषाई वैविध्य के साथ भी, लेकिन भारत में भाषाई वैविध्य जरूर है, लेकिन भारत में सांस्कृतिक एकता, जो जुड़ने के तार हैं आपस में लोगों के, वह एक है। हम सभी भारतीय।

हैं। इसलिए भाषाएं अलग होते होते भी हमारे भाव एक हैं और इस भाव की जो एकता है वह हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में बड़े महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देती है। इसलिए पहली बार जब अंग्रेजों का आगमन होता है और अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं मुगलों की सत्ता को विस्थापित करते हुए, तब हम देखते हैं कि उस समय जो हम लेखन है उस लेखन का तरीका अलग है, लेकिन जब वो यहाँ के लोगों पर शासन करना और निरंकुशता और यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार करना शुरू करते हैं तब उनकी नियति और उनका कार्य पद्धति बदल जाती है। दोनों में जो पत्रकारिता है, जो भाषा है, जो हमारी भूमिकाएं हैं वो अलग अलग ढंग से दिखाई देती हैं। इसकी ताकत भी है और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे हम बंगला की बात करें, चाहे मराठी की बात करें, चाहे गुजराती की बात करें, तमिल की बात करें, इन सभी भाषाओं में स्वाधीनता आंदोलन के लिए स्वर उठे और मजबूती के साथ खड़े हुए और देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। और भारत में पत्रकारिता की शुरुआत ही व्यवस्था के निरंकुश, व्यवस्था के व्यभिचारी, व्यवस्था के कदाचरण के विरुद्ध खड़ी हुई पत्रकारिता के रूप में भारत में पत्रकारिता विकसित हुई है। हम पहले ही पत्र से अगर देखें तो हम देखते हैं कि वह सत्ता के जो गलत मंशा है उसके खिलाफ पत्रकारिता खड़ी होती है। वह पत्रकारिता चाहे हिंदी की हो चाहे अन्य भाषाओं की हो, हिंदी उसमें एक प्रमुख भाषा थी, हिंदी एक बड़ी भाषा थी क्योंकि बोलने वाले समुदाय का व्यापकत्व तो ज्यादा था। तो देखा तो हिंदी में तमाम पत्र पत्रिकाएं थी जिसमें प्रताप एक महत्वपूर्ण पत्र था जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते थे, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित अभ्युदय, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित हिंदी का कर्मवीर, बंगला में हम देखें तो अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष ने संपादित की, मराठी में तो पत्रकारों की और पत्रिकाओं की सीरीज है पूरी, अगर संक्षेप में चर्चा करें तो केसरी जो प्रतिनिधि पत्र है मराठी का, बाल गंगाधर तिलक ने उसको संपादित किया, स्वयं महात्मा गांधी ने गुजराती में नवजीवन नाम का पत्र निकाला, स्वदेश मित्रन तमिल में सुब्रमण्य अय्यर ने निकाला, उर्दू में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने अल हिलाल नाम का पत्र निकाला। और इन सभी पत्र पत्रिकाओं को आप लेकर के देखें तो इन पत्र पत्रिकाओं का एक ही मंशा थी, वह मंशा थी कि भारत में स्वाधीनता की स्थापना करना। और यह स्वाधीनता सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, यह स्वाधीनता स्वदेशी स्वदेश के प्रति एक प्रेम के जागरण की स्वाधीनता थी, जिसमें इन पत्रिकाओं ने अंग्रेजी नीतियों की आलोचना की, लोगों में जनमत तैयार किया, स्वदेशी के प्रति लोगों की में रुचि जागृत की, और इन सब के बाधक तत्व जो अंग्रेज थे अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को खड़ा करने का काम किया। राष्ट्रीय आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार चल रहा है इसकी सूचना इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी। पत्र पत्रिकाएं वे साधन थे जिनके माध्यम से हम पूरे देश को एक साथ जोड़ पा रहे थे। आप देखेंगे कि यह समय था, यह दौर था जब अखबारों की एक आवाज पर लाखों लोग सड़क पे इकट्ठा हो जाते थे। यह अखबारों के प्रति पत्र पत्रिकाओं के प्रति लोगों का विश्वास था, लोगों को लग रहा था कि पत्र पत्रिकाएं ये अखबार हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी स्वाधीनता के लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए लोगों का विश्वास और लोगों का विश्वास जीतकर पत्रिकाएं इस देश को एकता के सूत्र में बांधने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। हम भारतीय मेधा को, भारतीय जो हमारी इंटेलिजेंसिया है इसको हम किस तरह से पीछे के समय से लेकर के बाहर आए हैं और हमारी क्या आवश्यकताएं हैं और हम पीछे किस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन में हम इनके माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके थे, इस सबकी पूरी मुकम्मल जानकारी अनेक आयामों, अनेक विषयों, अनेक संदर्भों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर दिया जा रहा है। जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो अंग्रेजों का एक माइंडसेट था, उस तरह के जो माइंडसेट को लेकर के हम जब चर्चा करते हैं तो हम यह देखते हैं कि उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। वह उद्देश्य था भारत पे अधिकतम समय तक शासन करना, यहाँ की संपदा को लूटना, यहाँ के संसाधनों को लूटना, अपने यहाँ ले जाना, और हमारे संसाधनों का जितना दोहन इस समुदाय ने किया जिसे हम ब्रिटिश नाम से कहते हैं, वह लोगों को जानना चाहिए और वह जानने का माध्यम ही है कि हम स्वतंत्रता आंदोलन के समय की पत्रकारिता की चर्चा करें, उस समय के इतिहास की चर्चा करें, उस समय के ज्ञान संपदा की चर्चा करें, उस समय हमारी स्कूलिंग सिस्टम की चर्चा करें, उस समय की हमारी सारी व्यवस्था जो समाज की व्यवस्था थी उसकी चर्चा करें, न्याय प्रक्रिया की चर्चा करें, तो लोगों में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी कि जो 200 वर्ष बीता हमारा अंग्रेजी शासन

0: काल में वो किस प्रकार का बीता। और इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन भारत की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकता थी जो एक समय में खड़ी हुई, और उसके आंदोलन के जरिए ही हम इस बड़े अपने अवरोधक तत्व को जो हमारे विकास में, हमारे ज्ञान के क्षेत्र में जो बाधक था उसे हम हटा सके। इसलिए तमाम तरह की जानकारियां दी जानी चाहिए और अनेक प्रकार से दी भी जा रही हैं। भाषा को लेकर के हमारा काम, जो निदेशालय का काम है हमारा, उसका जो मैंडेट है वो प्रोपगेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज है। हम उसके माध्यम से, हम भाषाई परिवारों की संकल्पना के माध्यम से, हम भाषाई एकता के माध्यम से, हम सांस्कृतिक संदर्भों को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं और लोगों के बीच जाकर के उसकी चर्चा करते हैं। हम तमाम प्रकार की संगोष्ठियाँ आयोजित करते हैं और विशेष करके जो हिंदी क्षेत्र से इतर क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में, उन क्षेत्र के लोगों को हम भारत के साथ उनके कैसे सामाजिक सांस्कृतिक संबंध हजारों हजार वर्षों से रहे हैं इसे एस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं, जिससे भारत में एकता, एकात्मकता और एकीकरण का भाव हम प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक व्यक्ति के बीच जागृत कर सकें।
1: भाषाओं की इस विविधता में जब राष्ट्र प्रेम शब्दों में ढलता है तो वो कालजयी बन जाता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य कृति भारत भारती ऐसी ही एक रचना है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीयों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित रखी है। थोड़े शब्दों में गहन भाव समेटे इस कृति पर आधारित है हमारी अगली प्रस्तुति, लघु रूपक अत्यल्प में संपूर्ण।
2: किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक संचेतना का पुनरुत्थान राजनीतिक मंचों से नहीं बल्कि किसी निष्ठावान साधक की लेखनी से निश्रित होता है। सन 1912 का वो दौर जब औपनिवेशिक सत्ता के दंश से संपूर्ण भारतवर्ष की चेतना सुप्त पड़ी थी, तब झांसी के चिरगांव से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला कर रख दी। एक ऐसी अमर कृति जिसने बहुत कम शब्दों में यानी अत्यल्प में पूरे भारत के गौरव, उसकी चेतना और उज्जवल भविष्य के सपनों को समेट लिया। भारत भारती अत्यल्प में संपूर्ण, और इसे अपनी लेखनी से रचा था राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने। तीन खंडों की इस कृति में मैथिली शरण गुप्त ने भारतवर्ष के त्रिकाल का संपूर्ण दर्शन उखेर दिया। भारत भारती का पहला खंड था अतीत खंड। वो पन्ने केवल कविता नहीं थे, वो सोई हुई कौम को जगाने के लिए ऋषियों की वाणी की तरह गूंजे थे।
1: उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा अवनत अभी उन्नत रहा होगा कभी, हंसते प्रथम जो पद्म है तम पंख में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मारतंड है, अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला।
2: मैथिली शरण गुप्त का राष्ट्र प्रेम केवल अतीत के यशोगान तक सीमित रहने वाला भावुकता का संजाल नहीं था। भारत भारती की वास्तविक अग्नि उसके वर्तमान खंड में धधक रही थी।
1: तुम सभ्य हो मार्केट जिनका सात सागर पार है, पर ग्राम की वो हाट ही उनका बड़ा बाजार है। तुम हो विदेशों से मंगाते माल लाखों का यहाँ, पर वे अकिंचन नमक गुड़ ही मोल लेते हैं वहाँ। तुम दार्शनिक हो ईश का अस्तित्व सत्य न मानते है, भूत प्रेतों से अधिक वे भी न उसको जानते। हा देव इस ऋषि भूमि का ये आज कैसा हाल है, तू काल सचमुच काल ही है क्रूर और कराल है।
2: गुप्त ने जब औपनिवेशिक गुलामी के दंश, हमारी आपसी फूट और सामाजिक शिथिलता पर लेखनी चलाई तो पंक्तियां कविता ना रहकर सोई हुई चेतना पर एक करारा

0: औपचारिक वज्रपात बन गई। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेश कटारे कहते हैं,
1: एक समय पर भारत भारती की स्थिति थी कि वो काव्य एक समय पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र जैसा हो गया था और आम जन के बीच में बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक रही थी। वह ये हिंदी की पहली कृति थी जिसने राष्ट्रीयता के प्रसार प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
0: प्रभात फेरियों से लेकर स्वाधीनता संग्राम की गुप्त बैठकों तक भारत भारती की पंक्तियां आजादी के दीवानों का पाथेय बन गई। इसी अप्रतिम जनचेतना और अनूठी राष्ट्र सेवा को देखते हुए सन 1936 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मैथिली शरण

0: 36 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के अमर समादर से अलंकृत किया।
1: हे नव युवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुष्य जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में, देखो कहां क्या हो रहा है आजकल संसार में। सुख शांतिमय सरकार का शासन समय है अब यहाँ, सुविधा समुन्नति के लिए है प्राप्त हमको सब यहाँ। अब भी न यदि कुछ कर सके हम तो हमारी भूल है, अनुकूल अवसर की उपेक्षा फूलती फिर शूल है।
0: भारत भारती का तीसरा और अंतिम खंड, भविष्यत खंड, मात्र एक राजनीतिक आजादी की मांग नहीं था, बल्कि वो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण, ज्ञान विज्ञान की उन्नति और विश्व बंधुत्व का संकल्प था। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजरानी शर्मा बताती हैं,
2: हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने हमें आदर्श की ओर उन्मुख किया। भारत भारती काव्य उन्होंने रचा और किस प्रकार से जीवन की संचेतना को उभारता है, देशभक्ति जगाता है, हमें हमारे अतीत के गौरव से मिलवाता है, वर्तमान का स्वरूप दिखाता है और भविष्य की राह बताता है।
0: भौतिक साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं, शासकों के आदेश पन्नों में सिमट जाते हैं, किंतु राष्ट्र चेतना के प्रांगण में रोपे गए शब्द अजर अमर रहते हैं। भारत भारती केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, ये भारतीय संविधान संग्राम की वैचारिक पीठिका है, जिसने हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को अक्षुण रखा है। साहित्य मनीषी KBL पांडे कहते हैं,
3: भारत भारती को याद करना न केवल इसलिए जरूरी है कि वो समय की एक प्रमुख पुस्तक है, बल्कि इसलिए कि स्वातंत्र्य चेतना की प्रेरणा के रूप में उसका मुख्य स्थान है। हम जब अपने त्रासद वर्तमान से मुक्ति कामना के लिए संघर्ष करते हैं, तो हमारे साथ हमारा वर्तमान ही नहीं होता, बल्कि हमारा प्रेरक और गर्वीला अतीत भी होता है और नए सूर्योदय के इस भविष्य का प्रकल्प भी होता है। जब हम समय के इन तीनों आयामों के बोध से संपन्न होते हैं, तो रचना की समग्रता के विचार में होते हैं, यानी जो हम करना चाहते हैं उसके प्रति हमारी पूरी दृष्टि होती है काल के तीनों आयामों के साथ।
0: राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का ये कालजयी शब्द शिल्प आज भी हमें यही स्मरण कराता है कि स्वदेश प्रेम ही हर राष्ट्र का शाश्वत प्राण तत्व है।
4: आलेख और वाचन प्रांजल, स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी ग्वालियर। राष्ट्र कवि की कविता के स्वर अभी थमे भी नहीं कि हमें याद आते हैं एक और कालजयी रचनाकार प्रेमचंद, जिनके कलम ने केवल कहानियां ही नहीं लिखी, आजादी के सपनों को भी शब्द दिए। उनकी महान कृतियों में बसा वतन का दर्द और आजादी की आकांक्षा आज भी उतनी ही जीवंत है। उदाहरण के लिए सोजे वतन, जिसकी रचना प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से की थी। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति कलम का दम और सोजे वतन।
5: तारीख अक्सर युद्ध भूमि की चीखों, तोपों की गूंज और साम्राज्यों के ढहने का हिसाब रखता है, लेकिन किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक इबारत किसी निष्ठावान साहित्यकार की मेज पर रखी स्याही से निस्तृत तो होती है। सन 1908 का वो दौर याद कीजिए, जब आजादी केवल एक राजनीतिक मांग नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की आत्मा की आकुलता बन चुकी थी। ठीक उसी दौर में हमीरपुर की एक शांत मेज पर जन्म होता है सोजे वतन का। रचनाकार नवाब राय, यहां सोज केवल एक शब्द नहीं बल्कि पराधीनता के दंश से पीड़ित किसी स्वाभिमानी हृदय की वो अंतर्वेदना है जिसने आगे चलकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ा दी। इसमें

0: मिल अमर रचनाएं, दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मखमूर, यही मेरा वतन है। शोक का पुरस्कार और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम केवल कहानियां नहीं थी, बल्कि पराधीन भारत की आत्मा की आकुलता थी। संग्रह की कहानी यही मेरा वतन है में प्रेमचंद ने अपनी मातृभूमि के प्रति जो भाव उकेरे थे, वे किसी श्रेष्ठ कविता से कम नहीं थे।
1: साहित्य मनीषी डॉक्टर मनीषा कहती हैं,
2: जब वे सोजे वतन में दास्तानों की शैली में दुनिया का सबसे अनमोल रतन और शेख मखमूर कहानी सुनाते हैं, तो उनका लक्ष्य अपने समय की सबसे बड़ी सच्चाई से ही भेंट कराना था, जिसे हुब्बे वतन कहते हैं। प्रेमचंद के समक्ष कहानी की शैली के लिए कोई दुविधा या संकट की स्थिति कभी नहीं रही। इस संकटहीनता को समझने के लिए सोजे वतन एक सुंदर नमूना है, क्योंकि उसमें दास्तानों की शैली से भिन्न कथा रूप की इश्क दुनिया और हुब्बे वतन भी सम्मिलित है। इन सबसे अलग कहानी के कहन का एक रूप यही मेरा वतन है और सिले मातम दिखाई पड़ता है। ये दोनों उत्तम पुरुष शैली की कहानियां हैं। प्रेमचंद अपनी रचनाओं के आरंभ, विस्तार, अंत, घटनाओं के चुनाव, भाषा शैली आदि के विषय में बहुत सचेत थे। वे किसी परफेक्शनिस्ट से कम नहीं थे।
0: 20वीं सदी के प्रथम दशक में जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम अपनी राजनीतिक चेतना के नए क्षितिज तलाश रहा था, तब इस संग्रह ने कथा साहित्य को क्रांति का एक सशक्त माध्यम बना दिया। संग्रह की पांचवी कहानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम में प्रेमचंद ने यह स्थापित किया कि व्यक्तिगत प्रेम से कहीं ऊंचा स्थान राष्ट्र प्रेम का है। निरंकुश साम्राज्यवादी सत्ताएं शास्त्रों से अधिक विचारों की शक्ति से भयभीत होती हैं। हमीरपुर के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर ने जब सोजे वतन के पृष्ठ पलटे, तो उसे प्रत्येक कथा में विद्रोह की गूंज सुनाई दी। इस कृति की 500 प्रतियों को जब्त करके सरेआम अग्नि के समर्पित कर दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत को यह भ्रम था कि उन्होंने कागज जलाकर क्रांति की ज्वाला को शांत कर दिया, किंतु वे भूल गए थे कि विचारों की राख से ही नए इतिहास का प्रादुर्भाव होता है।
1: साहित्य मर्मज्ञ मजरुल वासे कहते हैं,
3: ये कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार की बर्दाश्त से बाहर था। जिला कलेक्टर हमीरपुर उत्तर प्रदेश ने इसकी सभी उपलब्ध प्रतियां अपने सामने जलवा कर नष्ट करवा दी और लेखक नवाब राय, जो उस समय उप विद्यालय निरीक्षक थे, को सरकारी कर्मचारी होने के कारण और ये चेतावनी देकर क्षमा कर दिया कि आगे से वे अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कोई साहित्य नहीं लिखेंगे। दो विशेष परिवर्तन हुए। प्रथम तो ये कि नवाब राय का नाम बदल गया और वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। ये नाम उन्हें अखबार जमाना के संपादक दयाराम निगम ने दिया और दूसरा ये कि अब उनकी भाषा उर्दू से हिंदी हो गई।
0: आज जब हम स्वतंत्र भारत की अक्षुण हवाओं में सांस ले रहे हैं, तो हमें उस समर्थ लेखनी को भी नमन करना होगा जिसने बंधनों के कालखंड में स्वाधीनता के दीप प्रज्वलित किए थे। सोजे वतन केवल एक पुस्तक नहीं, हमारी आजादी की साहित्यिक हुंकार थी।
1: वाचन आनंद श्रीवास्तव, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी आगरा। साहित्य की ये यात्रा उन सबके बिना अधूरी है जिन्होंने अपनी लेखनी से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया और आज हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन जिनकी रचनाएं आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा, कथाकार भीष्म साहनी, उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी, व्यंग के हस्ताक्षर हरिशंकर परसाई, कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, कन्नड़ साहित्य के ज्ञानपीठ विजेता विनायक कृष्ण गोकक, असमिया साहित्यकार सैयद अब्दुल मलिक और कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव भारतीय

0: साहित्य में इन विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है साहित्य भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBA स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
1: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है। सिक्किम में नाथूला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्द्रा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया को आसान और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से ई भविष्य पेंशन स्वीकृति और ट्रैकिंग प्रणाली शुरू की है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के डिजिटल शासन के दृष्टिकोण के अनुरूप शुरू की गई इस पहल के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC ने 25 पायलट विभागों के अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीते। मुक्केबाजी में साक्षी, प्रिया, प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। साक्षी ने महिलाओं के 51 किलोग्राम वर्ग में, वहीं प्रिया ने 60 किलोग्राम वर्ग में पदक देश के नाम किया। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम और जैस्मिन ने 57 किलोग्राम वर्ग में ये पदक हासिल किया। अरुंधति चौधरी ने महिला 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता। उधर जूडो के 63 किलोग्राम स्पर्धा में 29 शर्मा ने कांस्य पदक

0: And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रवि कपूर। मुख्य समाचार। स्पेन के स्यूटा सीमा संकट में मृतकों की संख्या बढ़कर 67 हुई। प्रवासियों की बढ़ती संख्या के कारण नए सुरक्षा उपाय लागू। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या 50 से अधिक। मानवाधिकार समूहों ने पाकिस्तानी सेना पर दमन का आरोप लगाया। फ्रांस में जंगल की भीषण आग पर काबू, हजारों लोग अपने घर लौटे। दक्षिणी फ्रांस और ग्रीस में नई आग लगने से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुर्जा का ब्रॉड पीक में हिमस्खलन से निधन। और राष्ट्रमंडल खेलों में 5 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता। पैरा एथलीट सोमन राणा ने पुरुषों के शॉर्ट पुट F57 में स्वर्ण पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। स्पेन ने कहा है कि मोरक्को से लगी सीउटा सीमा पर प्रवासी संकट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है। इनमें समुद्र में डूबने वाले और सीमा पार करने की कोशिश के दौरान भगदड़ में जान गंवाने वाले लोग शामिल हैं। इसके बाद स्पेन ने सीउटा और मोरक्को के बीच समुद्री सीमा पर 500 मीटर लंबी अवरोधक दीवार लगाने की घोषणा की है।
2: इस सप्ताह 50,000 से अधिक प्रवासी सीउटा में दाखिल हुए थे। स्पेन के गृह मंत्रालय ने कहा कि इनमें से अधिकांश लोगों को वापस मोरक्को भेज दिया गया है और दोनों देशों के अधिकारी स्थिति को सामान्य बनाने तथा राहत कार्यों में जुटे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने यूरोपीय संघ से इस मुद्दे पर सदस्य देशों के गृह मंत्रियों की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि स्पेन ने 48 घंटे के भीतर सीमा पर नियंत्रण फिर से स्थापित किया, राहत सहायता उपलब्ध कराई, अधिकांश प्रवासियों को वापस भेजा और उन्हें यूरोप के अन्य हिस्सों में जाने से रोका। इस संकट के बीच इटली ने भी स्पेन से लगती सीमाओं की यात्रा पर अस्थायी रोक लगा दी है। इसका असर दोनों देशों के बीच हवाई और समुद्री सेवाओं पर पड़ेगा। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने कहा है कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और यूरोपीय संघ की बाहरी सीमाओं की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। ये प्रतिबंध आज से 1 महीने तक लागू रहेगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार ये दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। इस बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
3: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के शिपकीला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार करीब 6 वर्ष बाद फिर से शुरू हो गया है। किन्नौर जिले के पूह उपमंडल की सीमावर्ती पंचायत नवग्या में आज राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने

0: छुपन ट्रेड मार्ट का उद्घाटन किया और 17 व्यापारियों के दल को सीमा पार व्यापार के लिए रवाना किया। कोविड-19 महामारी के बाद वर्ष 2020 से ये व्यापार बंद था। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। दक्षिण पश्चिम फ्रांस में लगी जंगल की भीषण आग पर काबू पा लिया गया है, जिसके बाद करीब 1,98,000 लोगों को घर लौटने की अनुमति दी गई। हालांकि दक्षिणी फ्रांस और ग्रीस में नई आग लगने से फिर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि दमकल कर्मी अब भी 240 किलोमीटर लंबे क्षेत्रों में आग के बचे हुए हिस्सों और सक्रिय स्थानों पर काबू पाने में जुटे हैं। ग्रीस में एथेंस के पश्चिम में प्रोटो जर्मनो तटीय क्षेत्रों के पास तेज हवाओं के कारण जंगल में आग फैल गई। करीब 300 लोगों को समुद्र के रास्ते सुरक्षित निकाला गया है। फ्रांस और स्पेन में लगी जंगल की आग के कारण अब तक करीब 3,30,000 लोग अपने घरों और पर्यटक स्थलों से विस्थापित हो चुके हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से कई हमले किए, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स से बात की और इस हफ्ते की शुरुआत में वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई अपनी बैठक पर चर्चा की, जिसे उन्होंने सकारात्मक और सार्थक बताया। प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुर्जा का 43 वर्ष की आयु में पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन की चपेट में आने से निधन हो गया है।
1: निर्मल पुर्जा ने महज 6 महीने में दुनिया की 8,000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ाई करके ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। निर्मल पुर्जा उन 10 सदस्यीय अभियान दल का हिस्सा थे जो ब्रॉड पीक पर चढ़ाई करने का प्रयास कर रहे थे, तभी 30 जुलाई को हिमस्खलन आ गया। उनके निधन की पुष्टि आज अभियान कंपनी एलीट एक्सपेड ने की। पाकिस्तानी पर्वतारोहण अधिकारियों ने बताया कि कल पर्वत से 4 शव बरामद किए गए थे। विश्व दर्पण के लिए भारती।
0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीते। मुक्केबाजी में साक्षी प्रिया, प्रीति पवार, अरुधंती चौधरी और जैस्मिन लिम्बोरिया ने स्वर्ण पदक जीते। साक्षी ने महिलाओं के 51 किलोग्राम वर्ग में, वहीं प्रिया ने 60 किलोग्राम वर्ग में पदक देश के नाम किया। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम और जैस्मिन ने 57 किलोग्राम वर्ग में ये पदक हासिल किए। अरुधंती चौधरी ने महिला 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता। उधर जूडो के 63 किलोग्राम स्पर्धा में उन्नति शर्मा ने कांस्य पदक हासिल किया। एथलेटिक्स में सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सिल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किए। भारत 11 स्वर्ण, 15 रजत और 8 कांस्य समेत कुल 34 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हसून को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्पेन के स्यूटा सीमा में मृतकों की संख्या बढ़कर 67 हुई। प्रवासियों की बढ़ती संख्या के कारण नए सुरक्षा उपाय लागू। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या 50 से अधिक। मानवाधिकार समूहों ने पाकिस्तानी सीमा पर दमन का आरोप लगाया। फ्रांस में जंगल की भीषण आग पर काबू, हजारों लोग अपने घर लौटे। दक्षिणी फ्रांस और ग्रीस में नई आग लगने से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुर्जा का ब्रॉड पीक में हिमस्खलन से निधन। और राष्ट्रमंडल खेलों में 5 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ।

0: Please stand by now for the news in Hindi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBA स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
1: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि जांच की जा रही है कि विदेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राशि का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया गया है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 12 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 36 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुधंती चौधरी और सचिन सिवाच ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we do not address stock or company specific queries. You can call us on these numbers 2331 4444, 2371 7117, and 2331 0464. These are Delhi numbers, so listeners do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. Shrotaon, kyunki aaj shanivar hai, to isliye har shanivar ki tarah hum aapke phone calls par puche gaye sawalon ko seedha karyakram mein shamil karenge. Aap hame call kijiye 2331 4444, 2371 7117 और 2331 0464 पर. दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं, वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड भी डायल करें. लेकिन जरूर याद रखें कि किसी विशेष स्टॉक या कंपनी से जुड़ी जानकारी हम इस कार्यक्रम में आपको नहीं दे पाएंगे. आपके प्रश्नों के उत्तर लेकर स्टूडियो में आमंत्रित हैं अर्थव्यवस्था पर विशेष पत्रकारिता करने वाले वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: आप दोनों को नमस्कार, धन्यवाद.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: थैंक यू प्राची. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस रजिस्टर ओवर 1.6% वीकली गेन. सेंटर रिलीजेस ओवर 1.09 लाख करोड़ रुपीस एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ टैक्स डेवल्यूशन टू स्टेट्स. एंड इंडियाज जीएसटी कलेक्शंस सर्जेस ओवर 2.11 लाख करोड़, मार्किंग 15.4% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन जुलाई.
1: इस सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में 1.5% से अधिक की तेजी आई. केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किश्त जारी की. और भारत का जीएसटी संग्रह जुलाई माह में 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक दर्ज किया गया. ये साल दर साल लगभग 15.5% से अधिक की बढ़ोतरी है.
0: And before we begin the program, an important announcement. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं, अब जान लेते हैं कि इस पूरे सप्ताह हमारे जो शेयर बाजार हैं उनका रवैया कैसा रहा, उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया. तो श्रोताओं, राष्ट्रीय शेयर बाजार के प्रमुख शेयर सूचकांकों ने इस सप्ताह का समापन मजबूती के साथ किया. फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑटो क्षेत्र में आई तेजी के कारण सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 1.5% से अधिक की बढ़ोतरी हुई. सेंसेक्स 1,258 अंक बढ़कर 78,094 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 387 अंक बढ़कर 24,883 पर बंद हुआ. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में शुक्रवार को भारतीय रुपया मजबूत हुआ, जिससे स्थानीय मुद्रा में मार्च के बाद से सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गई. रुपया हर सप्ताह लगभग 1% बढ़कर 95.38 प्रति डॉलर पर बंद हुआ.
0: Shishir, let's begin with how the markets behaved this week. We are looking at it like Apache just read, that the markets, both the Sensex and the Nifty, advanced more than 1.6%. What are the factors that have contributed to this rise in the Sensex, in the, both the indices this week?
2: In fact, July has brought very good news for the market as well as for rupee also. I think the performance in the stock market was best among in the last 3 months. And one of the reason is like we have seen some kind of disruptions, the second round of war. Now we are seeing some kind of, I mean, the war is now slightly on a back foot. I'm not saying

0: That it has stopped.
1: Yeah.
0: But still there are some indications of peace, and that is giving some confidence to the market also. The second factor which is very important is that now the market is already at a very low level. So it is giving an opportunity for the people to make fresh investment, okay. Whether we talk about investors from foreign countries or whether we talk about the domestic one. The third one, the two countries which ruled the market in the month of last week of June and first week of July, South Korea, yeah. And Taiwan, now that phase is over.
1: Yes.
0: So those investors are also coming to India, and these are the three factors which has given a good performance in month of July.
1: Shishir, bazaar ki vivechna jari rakhenge, magar usse pehle humare pehle caller jud rahe hain, inka naam hai Premjeet aur ye hain Delhi se. Premjeet, karikram mein aapka abhinandan, kripya apna sawal poochhiye.
2: Ji, aap sare team ka abhinandan, pranam. शिशिर साहब
0: प्रणाम प्रणाम
2: शिशिर साहब अभी जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि जब मैं चाय के लिए बुलाया गया और उन साहब से उनको चाय दिया और उन्होंने मुझे इंडियन होते हुए पूछा डू यू नो दिस फलाना सर लैंग्वेज तो समझ में नहीं आ रही है बाकी ये हनुमान जी है और इनका गदा है श्रीलंका का ये एरिया है जहाँ हम लोग सर्वे कर रहे थे
3: प्रेम जी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका अगर बाजार से जुड़ा हुआ
2: बाजार से वही है
3: जी
2: सर्वे का आज के मार्केट पर हम लोगों का हमारे देश का कितना कंट्रोल है सर
3: आप किस सर्वे की बात करें अगर आप थोड़ा सा खुलासा कर सके
2: कमोडिटी की मैडम जैसे तेल गैस जो समुद्र में निकलती है ना उससे एक सर्वे होती है मैडम जी पहले जहाजों से तो हम उन जहाजों पे काम करते थे तो उस समय वो डाटा आता था तो वो लोग हम इस स्टोरी को हमसे शेयर करते थे तो हमारी उत्सुकता शिक्षित साहब से वही जानने में है
0: जी मैं
2: हमारे पास
0: हाँ समझ गया प्रेम जी जी आप सिस्मिक डेटा की बात कर रहे हैं अगर आप याद करें तो कल जो कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला किया समुद्र मंथन उसके दो हिस्से हैं और एक हिस्सा उसमें जो है वो है डेटा के कलेक्शन के ऊपर है और दूसरा जो हिस्सा है वो है आपका एक्सप्लोरेशन को तो देखिए कहीं भी आप पूंजी लगाते हैं यानी कि आप कोई मशीन लगा रहे हैं उसके पहले अगर उस जगह की आपको जानकारी नहीं हो तो फिर आपके लिए वो पूंजी जो है वो शायद उतना फायदा आपको नहीं देगी तो ये सर्वे किया जाता है जिसके आधार पर तरह तरह के डेटा हासिल किए जाते हैं कि वहां पर क्या कुछ संभावनाएं हैं तेल की या गैस की वो सर्वे काफी अहमियत रखते हैं और इसी वजह से अगर आप समुद्र मंथन योजना के बारे में देखेंगे तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो डेटा और डेटा एक्विजिशन यानी कि कोई और भी एजेंसी अगर सर्वे कर रही है तो उसका ले सकते हैं तो सर्वे की बहुत बड़ी भूमिका है आंकड़ों की बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि उसी के आधार पर आप आगे निवेश की रणनीति बनाते हैं
3: जी लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी US stocks rose yesterday to finish a wild July for Wall Street as Amazon leaped, Apple sank, and rising oil prices worsened worries about inflation staying high. The S&P 500 climbed 0.7% after veering between gains and losses through the day. The Dow Jones Industrial Average added 0.5% and the Nasdaq Composite rallied 1%. Shishir, again, I would like a comment from you on the way the US markets, through the month and specifically because just before the month ended, we had the Fed meeting, where they have decided to keep the rates same. And there was also one other, development where the 30-year Treasury bonds, they had hit almost near highs of 2007. So overall, how do you look at the way the markets, US markets were, in the month of July?
0: You rightly mentioned about the Federal Reserve meeting where they kept the interest rate at the same level.
3: Yep.
0: But one of the key concerns, there is a rising inflation. And that inflation is what they call it as the imported inflation because many of the goods which are coming from various other countries, they are brought into the US at a very high tariff because US imposed tariffs on number of countries and now that is going to impact the inflation number. That is why Federal Reserve has kept the interest rate at the same level but they are also giving or they are rather I would use the word they are cautioning that there could be some kind of impact on the interest rate and if it happens, it's not a good news for India because when the US takes Federal Reserve of US takes a decision on hiking the interest rate, that means the money will flow out from the country,
3: yes.
0: And that is not a good news for us.
1: Right. और आलोक कुमार हमें join कर रहे हैं श्रोताओं. आलोक जी, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: हेलो
1: जी आलोक जी कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: हाँ मैडम गुड इवनिंग.
1: गुड इवनिंग.
4: हाँ मैडम मेरा सवाल ये है ना कि जैसे शेयर मार्केट में जैसे कोई पर्सन आता है तो मुझे

0: मतलब मैंने ज्यादा बेस्ट किसी पर्सन के लिए एफएनडो सेगमेंट हो सकता है या फिर डेरिवेटिव जो कैश सेगमेंट होता है जिसमें डिलीवरी लेते हैं या वो ज्यादा बेस्ट है, मतलब क्योंकि मैं नया था तो
1: आलोक जी, आलोक जी एक मिनट में रोकूंगा, आप व्यक्तिगत निवेशक हैं या कोई?
0: मैं
1: आप
0: व्यक्तिगत निवेशक हूं, मैं पर्सनल इंडिविजुअल हूं मैं, और क्योंकि मैंने अपना लॉस कर दिया था एफएनडो सेगमेंट में। हालांकि बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं कि हम आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे पास डीमैट ओपन कीजिए, हम आपको प्रॉफिट करा के देंगे एफएनडो सेगमेंट में।
1: अच्छा,
0: तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट करा के देंगे। अभी कि कोई मुझे कहता है कि नहीं एफएनडो बहुत डेंजर सेगमेंट है, उसे मत एंटर कीजिए।
2: नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, बिल्कुल आलोक जी, हम आपकी बात समझ गए हैं और ये बहुत ही आपने बेसिक, कोई भी जो शिशिर नया निवेशक है उसके मन में यही सवाल होता है कि बाजार में इतनी अनसर्टिनिटीज होती हैं और इतना डर लगता है, इतना भय लगता है कि हमारा हमारी जो बचत है, हमारी जो जमा पूंजी है वो कहीं व्यर्थ ना हो जाए। तो आपसे हम अपने बाकी श्रोताओं के भी उपलक्ष्य में जानना चाहेंगे, और आलोक जी तो है ही है, आप बताइए कि किस तरीके से निवेशक बाजार में घुसे वो SIP अच्छा होगा नए निवेशकों के लिए, वो FNO डेरिवेटिव मार्केट्स अच्छा होगा या कैसे?
1: देखिए सेबी के रिपोर्ट के हिसाब से 10 में से 9 निवेशकों ने FNO में पैसा गंवाया है और पैसा अच्छा खासा गंवाया है। क्यों गंवाया है? क्योंकि FNO या जिसको आप डेरिवेटिव मार्केट भी कह लीजिए, ये बाजार ऐसा है जो कि छोटे निवेशकों के लिए नहीं है, ये बड़े और बहुत ही परिपक्व निवेशक के लिए है और ये दरअसल नगदी बाजार से सुरक्षा मुहैया कराने का एक माध्यम है। आप नए हैं, आप एक व्यक्तिगत निवेशक हैं, आप नगदी बाजार में जाइए, आप म्यूचुअल फंड में इस्तेमाल करिए, जहां पर आपके लिए आपने पैसे दिए, आपने शेयर खरीदे, डिलीवरी ली, अगले कुछ समय में जब भी आप चाहें आप उसको बेचिए, आप अपना पैसा लीजिए, घाटा मुनाफा जो भी है उस हिसाब से आप कर का भुगतान कीजिए, कहानी खत्म है। आप यदि कुछ ज्यादा बड़े सौदों में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा जिसकी आपको समझ नहीं है। दूसरी बात, जो FNO मार्केट है वो क्यों लोगों को खींचता है? इसलिए खींचता है क्योंकि लोगों को लगता है मार्जिन पे करेंगे, यानी कि 100 रुपए के माल के लिए 5 रुपया पे करेंगे और हम सौदा कर सकते हैं, लेकिन वो 95 रुपया आप नहीं भी पे कर रहे हैं लेकिन आपके ऊपर वो देनदारी बन जाती है और वो 5 रुपया दे करके आप सोचते हैं कि हमने बड़ा सौदा कर लिया है, वो उचित नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक परिपक्व निवेशक हैं, आपको बहुत अच्छी बाजार की समझ है, थोड़ा सा हिस्सा आप उसमें लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, एक आम निवेशक हैं, तो आपके लिए नगद बाजार एक बेहतर विकल्प।
3: Let's go on to our next call. Again coming in from Delhi, it's Tigrish is with us from Delhi. आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछें।
4: हेलो जी।
3: जी हाँ जी, नमस्ते, अपना सवाल पूछें। जी सवाल पूछें।
4: तो बैंक में एक जानकारी दी थी कि 50,000 रुपए जमा करके एक FD बनती है 444 दिन के लिए, तो ऐसा कोई होता है प्लान?
1: अलग अलग बैंकों की अलग अलग योजनाएं होती हैं कुछ खास समय के लिए, जैसे वो 555 दिन या 444 दिन की योजनाएं बनाते हैं, और अगर जो भी एक जिसको कहें कि हमारे जो 12 सरकारी बैंक हैं या 22 निजी बैंक हैं या फिर विदेशी बैंक हैं, वो इस तरह की योजना लेकर के आते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, याद रखिए कोई असंगठित क्षेत्र से आकर के आपको कहता है कि आप 444 दिन के लिए आप पैसे लगा दो और हम आपको 12% और 15% का ब्याज देंगे, भूल के मत जाइएगा, ब्याज तो छोड़ दीजिए, मूल भी डूब जाएगा।
3: पर शिशि यहाँ जैसे उन्होंने कहा कि 50,000, तो जहां तक हमारी जानकारी कोई ऐसे कोई खास
1: नहीं, कोई सीमा नहीं होती है। आप इसमें 444 दिन, जैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो कई सरकारी बैंक जो है वो जमा के लिए विशेष अभियान चलाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि आप जब जमा से पैसे आएंगे तभी तो आप कर्ज दे पाएंगे और कर्ज देने की रफ्तार अभी ज्यादा है, जमा कम आ रहे हैं, तो इसमें एक खास समय के लिए इस तरह के, जैसे कहते ना, आपको याद होगा कि एक खास कंपनी का जो जूता चप्पल होता था वो 99 पे आकर टिक जाता था।
3: बिल्कुल।
1: तो ये हमें कहीं ना कहीं आकर्षित करता है कि अच्छा 333, 444, 555, 666, तो ऐसे जो है ये आपको आकर्षित करने के लिए है। बस वही मैंने कहा कि एक ध्यान रखिए कि आपको कौन आपके लिए प्रस्ताव दे रहा है, एक नियमित सरकारी बैंक या निजी बैंक या विदेशी बैंक या कोई एक असंगठित संगठन, उससे दूर रहे।
2: शशि जी, एक और बहुत ही आधारभूत सवाल मैं आपसे पूछूंगी जो अमूमन सभी निवेशकों के मन में और खास करके हमारे जो मार्केट मंत्र के जो श्रोता है उनके मन में रहता है, वो ये कि अपना पोर्टफोलियो डिविजन कैसे करें, कितने प्रतिशत, अगर हमारे मान लीजिए मेरे पास 500 रुपए हैं और हम मैं उसमें से कितना पैसा कहां पर किस तरीके

0: तरीके से डिवाइड करूं कि ज्यादा से ज्यादा जो है मैं अपना एक आउटपुट उस का निकाल पाऊं। हम आगे बढ़ेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले अमित झा हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिल्ली से। अमित झा, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
1: अमित जी सवाल पूछिए।
0: अमित जी आप हमें सुन पा रहे हैं?
2: हेलो
1: जी, सवाल पूछिए।
2: हाँ नमस्कार सभी को।
1: नमस्कार
2: सिन्हा सर से मेरा प्रश्न ये सर कि जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में हम अच्छे स्थिति में तो है सर। हेलो।
1: हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं।
2: लेकिन सर हम उनके जो टेलीकॉम के कंपोनेंट है अभी भी हम चाइना से भारी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, जबकि सरकार मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए गुजरात है या मध्य प्रदेश है ऐसे जगह पे उन्होंने प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश कर रहे हैं, लेकिन कब तक हम मैन्युफैक्चरिंग के इक्विपमेंट को अपने ही देश में उत्पादन करके पूरे हैंड असेंबलिंग करके हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आएंगे? धन्यवाद।
1: अमित जी देखिए, अभी दो जगहों पर सेमीकंडक्टर, दो या तीन जगहों पर सेमीकंडक्टर का जो है वो प्रोडक्शन शुरू भी हो गया है और हमें उम्मीद है कि अगले दो से तीन वर्षों में हम काफ़ी अच्छी स्थिति में होंगे। देखिए अभी जब ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू हुआ और जिसके बाद मोबाइल हैंडसेट एक से एक बनने लगे, हमारे यहाँ बनना नहीं कहना चाहिए, असेंबलिंग होने लगे, तो वहां पर जो कल पुर्जे हैं, हर तरह के कल पुर्जे आप नहीं बना पाएंगे, उसकी एक विशिष्टता होती है, उसकी पेटेंट होती है। जैसे मैं आपको दवा का भी उदाहरण दूं कि हम दवा के मामले में दुनिया के लिए फार्मेसी का हब कहे जाते हैं, लेकिन अभी भी हमें API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो कि कच्चा माल है दवा का, वो हमें आयात करना पड़ता है और निर्भरता कम हुई है लेकिन अभी भी आयात करना पड़ता है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि अगले दो से तीन वर्षों के दौरान जो है हम इनमें से कई कल पुर्जे और खासतौर पे जो चिप की बात है वो हम अपने यहाँ उत्पादन करना शुरू कर पाएंगे, उसके ऊपर हमारी जो आयात पर निर्भरता है वो खत्म होगी।
0: और हमारे साथ अनुभा एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, इनका नाम है SPS जैन और ये है नोएडा से। बहुत बहुत अभिनंदन आपका कार्यक्रम में महोदय, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार।
3: ये अभी मैं सुन रहा था किसी व्यक्ति ने 444 दिन का एक डिपॉजिट स्कीम के नाम लिया था, तो मैं खास बैंक का नाम तो नहीं ले सकता लेकिन कहिए तो मैं बता देता हूँ, स्टेट बैंक का ये मैं काफी डिपॉजिट रखा हुआ है, आई एम ए सुपर सीनियर, मुझे 7.05 दे रहे हैं और काफी, और दूसरी स्कीम ये SBI का कंप्लीट टोटल सेफ स्कीम है, बस यही मैं आपको क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा था।
0: चलिए आपने ये जानकारी शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं।
1: अब इनका सवाल जो था, चूंकि जैन साहब ने हमारे लिए जो एक धर्म संकट होता ना कार्यक्रम की, एक ऐसी प्रस्तावना है कि हम किसी संस्था का नाम नहीं लेते हैं, तो चलिए जैन साहब ने हमारा धर्म संकट दूर किया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका मूल सवाल था कि कितना पैसा कहाँ रखें,
0: प्रतिशत,
1: हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ मैं, तो जैसे होता ना कि एक पहला फॉर्मूला जो है वो 60-20-20 का है। 60-20-20 क्या होता है कि 60% आप खर्च करते हैं, 20% आप बैंक में रखते हैं ताकि वो एक तरीके से आपको सुरक्षा दे, और 20% आप कहीं ना कहीं निवेश करते हैं। आप कहेंगे बैंक में क्यों रखते हैं और निवेश अलग, दोनों के लिए अलग क्यों रखा गया? क्योंकि बैंक आपके लिए क्या है ना कि आपके लिए एक डिमांड है, आपको जब पैसे की जरूरत है आप ATM से निकालते हैं, जब कोई कहता है ना कि परेशानी और विपदा बता के नहीं आती, तो उसके लिए आपके पास एक ऐसी रकम होनी चाहिए जो एनी टाइम मनी, इसीलिए हम ATM कहते हैं। तीसरा जो 20% है, अब उसकी हिस्सेदारी पे आ जाएं। अब उसमें क्या होता है कि आपकी उम्र क्या है, अगर आप मान लीजिए कि 30 से 40 साल से कम उम्र के हैं तो आप उसका एक बड़ा हिस्सा, जिसे मैं कहूंगा कि 70% या 60% तक हिस्सा आप शेयर बाजार में लगा सकते हैं, बाकी जो 40% है उसमें से 10% आप सोने में लगाएं और बाकी जो 30% है वो म्यूचुअल फंड में लगाएं। फिर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाए तो फिर आप 60 को घटाते जाएं, वो आप 50 पे लाएं, 40 पे लाएं, और फिर वहां पर जो आपका डेट इंस्ट्रूमेंट है उसमें आप बढ़ाते जाएं, क्योंकि सुरक्षा है, क्योंकि एक उम्र के बाद हमारी कमाई नहीं होती है और हमें नियमित आय की जरूरत है, तो वहां पर हम जाएं, जैसे बैंकों के फिक्स डिपॉजिट है या डाकघर की बचत योजनाएं हैं उनमें हम लगाएं, जिसमें हमारा मूल और ब्याज दोनों सुरक्षित रहे। बैंक और डाकघर में एक बड़ा अंतर ये हो जाता है कि डाकघर में जो आप पैसा रखते हैं उसमें मूल और ब्याज दोनों की गारंटी सरकार की होती है, बैंक में जो आप रखते हैं वहां पर बैंक की गारंटी होती है कि आपको वापस करेंगे, लेकिन अगर बैंक बंद हो जाए तो आपको 5 लाख रुपए तक ही जो है वो प्रति खाते आपको मिल पाते हैं।

0: हिस्सा अगर आप डाकघर की बचत योजना में रखते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है।
1: और इस बीच वी हैव आवर नेक्स्ट कॉलर ऑनलाइन विद अस, शंकर इज कॉलिंग अस फ्रॉम भोपाल। शंकर, वेलकम टू मार्केट मंत्र एंड प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
2: सर नमस्ते मार्केट मंत्र टीम को।
1: जी,
2: इन रिसेंट टाइम्स वी हैव सीन डॉलर सॉरी रुपीज हैव डिप्रिशिएटेड क्वाइट अ लॉट एंड द बैंक डिपॉजिट रेट्स आर नॉट कवरिंग द इन्फ्लेशन। इज देयर एनी वे और एनी अदर ऑप्शन अवेलेबल फॉर रिटेल इन्वेस्टर लाइक अस हु कैन इन्वेस्ट प्रोबेबली इन डॉलर डिपॉजिट अंडर LRS स्कीम? LRS स्कीम में क्या डॉलर डिपॉजिट हम लोगों के अवेलेबल है क्या इंडियन रेजिडेंट इंडियन टैक्स पेयर के लिए? क्योंकि $2,500 बाहर भेज सकते हैं बट शेयर खरीद सकते हैं क्या? डिपॉजिट हम दे सकते हैं क्या सो दैट वी गेट द बेनिफिट ऑफ दैट हायर इंटरेस्ट सॉरी लोअर इंटरेस्ट रेट बट डॉलर अप्रिसिएशन?
0: नहीं देखिए, ऐसा है ना कि आप बाहर जो पैसा भेजते हैं उसमें बहुत सारे के जो है वो तकनीकी जो कहते हैं कि एक जरूरतें होती है वो पूरी करनी होती है। और दूसरी बात है कि आपके पास यहाँ पर भी अगर आप जैसे मैं अभी प्रोपोर्शन की बात कर रहा था कि कहाँ कहाँ पर कितना रखें, तो अगर आप अपने डाइवर्सिफाइड कर लेते हैं पोर्टफोलियो को, जैसे आपने आपकी उम्र अगर मान लीजिए कि 50 वर्ष के है, एक निश्चित हिस्सा आप शेयर में, एक निश्चित हिस्सा म्यूचुअल फंड में, एक निश्चित हिस्सा जो है वो बैंक में, और एक निश्चित हिस्सा जो है अगर आप डाकघर की बचत योजनाओं में रखते हैं, तो आप ये जो रिटर्न है ना उसको भले ही ये ना कहें कि हम कहें कि 10% हो जाएगा। दूसरी बात आप ये भी याद रखिए कि बाहर के देशों में ब्याज दर इतना भी ज्यादा नहीं है जो कि आपकी अपनी जो महंगाई दर है उससे वो उसका सामना कर सके। आप ये कह सकते हैं कि डॉलर, तो डॉलर का अगर आप जो बढ़ोतरी का फायदा उठाने की बात करेंगे तो वो आप US में ही रख सकते हैं, और US की जो नियमन है, US की जो व्यवस्था है, उसके लिए आपको बहुत सारे जो तकनीकी पेचीदगियां हैं उनको आपको पार करना पड़ेगा। तो मेरा आपसे सुझाव इतना ही है कि आप उसको डाइवर्सिफाई कर लीजिए तो आपके लिए ब्याज दर की जो आप बात कर रहे हैं कि कम मिलता है वो आपको आप देखेंगे कि आपका बढ़ा है।
1: अन्य खबरों में श्रोताओं, केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किश्त जारी की है। ये राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किश्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। मंत्रालय द्वारा जारी राज्यवार विवरण के अनुसार उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 19,208 करोड़ रुपए मिले हैं, इसके बाद बिहार को 10,845 करोड़ और मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपए दिए गए हैं। Let's move on to the next story. Oil marketing companies have reduced the price of a 19 kilogram commercial LPG from today. After the price cut, the new price of commercial LPG cylinder in Delhi will be 2,738 rupees. The price of a 19 kilogram commercial LPG cylinder in Kolkata is 2,872 rupees and 50 paisa, while in Mumbai it will be 2,691 rupees and 50 paisa, and in Chennai it is going to be 2,906 rupees. According to the Indian Oil Corporation Limited, the new prices for commercial LPG cylinders came into effect from today. This decision will provide relief to restaurants, dhabas, hotels and those involved in the food and beverage business.
3: Aur Pune se hamare sath Kumar jud rahe hain. Kumar ji, karyakram mein aapka abhinandan. Kripya aapka sawal poochhe.
4: Ji, good evening. Namaskar.
0: Namaskar.
4: Ji, mera sawal ye hai ki agar hum koi naye person hain aur agar humko achhi tarah se seekhna hai share market mein nivesh kis tarah se kare to hum kahan se seekh sakte hain, kaun sa koi platform hai jahan se hum seekh sake, jaise ki derivative segment ho ya future and option segment ho ya delivery ho ya intraday ho, ye hum kis tarah se seekh sakte hain, acha koi platform jahan se hum achhi tarah se seekh ke expert ho jaye?
0: देखिए कुमार जी, एक्सपर्ट बनने में तो समय लगता है, और दूसरी बात यह कि आप जैसे ही गूगल करेंगे आपके सामने इतने लिंक आ जाएंगे, इतने सारे इन्फ्लुएंसर और जो सो कॉल्ड हमारे एक्सपर्ट हैं वो आ जाएंगे कि आपके लिए हो सकता है कि सही और गलत के बीच अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो मेरा आपसे सुझाव यह है कि कुछ पहले क्या होता है बेसिक, जिसको कहते हैं ना क ख ग ABC सीखना हो तो आपके लिए बहुत अच्छा और सस्ता और बिल्कुल मुफ्त में, जिसको मैं कहूँ सस्ता नहीं कहना चाहिए, वो जैसे BSE की वेबसाइट पे आप जाएंगे वहां पर भी कई तरीके के इन्वेस्टर एजुकेशन के जो है वहां पे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। सेबी की वेबसाइट पे जाकर के इन्वेस्टर मटेरियल्स आप देख सकते हैं, उनको पहले पढ़िए, उनको समझिए कि आप सेंसेक्स क्या होता है।

0: निफ्टी क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है, अगर आप बेसिक समझ जाएंगे और फिर उसके बाद आप जो इतने भी हमारे जो बिजनेस चैनल्स हैं या बिजनेस अखबार है उनको नियमित तौर पे पढ़िए, तो आपकी जब समझ बेहतर होगी तो आप इस मामले में आगे बढ़ सकते हैं। विशेषज्ञ बनने की बात है, कितना समय लगेगा मुझे नहीं मालूम क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं है।
1: और सबसे बड़ी बात कुमार जी कि आप मार्केट मंत्र कार्यक्रम के साथ रोजाना जुड़े रहिए ताकि आपको रोजाना नई नई अपडेट्स मार्केट्स की मिलती रहे और आप इसी तरीके से सीखते रहे।
2: Yeah, that's right. Prachin, let's move on to the next story. Goods and services tax, GST collections in the last month witnessed a significant rise to 2,11,205 crore rupees, marking a 15.4% year-on-year increase from 1,83,065 crore rupees in July 2025. According to the provisional data released by the Finance Ministry, gross domestic revenue stood at 1,44,695 crores, up 10.1% from a year ago. GST collections from imports surged 28.8% to 66,511 crore rupees, providing a boost to the overall monthly mop-up. Moving on, the Income Tax Department today said that over 5.9 crore income tax returns were filed for the assessment year 2026-27 by July 31st, 2026. Thanking taxpayers in a social media post, the department said that their trust and timely compliance provide the energy that fuels India's growth.
1: दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। सभी पात्र महिलाएं dly.delhi.gov.in पर अपना पंजीकरण करा सकती हैं। दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 21 से 60 आयु वर्ग की 11 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए दिल्ली बजट 2026-27 में 5,110 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
2: And let's move on to the next story. Oil prices ended the month of July with their biggest monthly gains since March, as concerns over global crude flows mounted amid Iranian reports that some tankers were forced to turn back in the Strait of Hormuz. For July, Brent gained 24% and WTI rose 21%. Shishir, you know, because we're talking about, we just read a story about the Income Tax Department and it till date, when yesterday was the last date for certain people, 5.9 crore income tax returns have been filed. How important is this for the overall economy?
0: Yeah, this year there is a change in the system.
2: Yeah.
0: Earlier there used to be July 1 for ITR 1, yes. ITR 2, ITR 3 and ITR 4. Now we have July 1 for ITR 1 and 2 and August 31st for ITR 3 and 4. So those who have not filled ITR 1, 2, even if they are eligible, now they will have to pay fine up to rupees 5,000.
2: Okay.
0: And they will not get certain kind of benefit. They will have time only till December 31st. So that is a very important clarification for the taxpayers. They should remember this thing. They can do it even now, but they will have to pay
1: fine. Shishir ji, कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices register over 1.6% weekly gain. Centre releases over 1.09 lakh crore rupees additional installment of tax devolution to states. And India's GST collections surges over 2.11 lakh crore, marking 15.4% year-on-year increase in July. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

தாழம்பூ படத்திற்காக டி எம் சவுந்தரராஜன் பேசு சுசீலா.

0: ஒலிக்கந்த பாடலோடு நிறைவு பெறுவது திரைகாணம் நிகழ்ச்சி. சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने आज कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम

0: आ रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि जांच की जा रही है कि विदेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राशि का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया गया है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। प्रधानमंत्री ने मुक्केबाजी स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन कर पदक जीतने पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उनका प्रदर्शन लगातार उल्लेखनीय रहा है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 36 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुधंती चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहेन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुष 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में नामीबिया के ट्राइगेन मॉर्निंग ज्वेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। आज रात ही नरेंद्र बेरवाल पुरुष 90 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में इंग्लैंड के दमार थॉमस से मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the area of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekananda Cultural Youth Centre, Viveka Smaraka, in Mysuru yesterday. The PM emphasized that Swami Vivekananda's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building. Mr. Modi further said the capabilities of our youth has transformed India into the second largest mobile phone market. New strides are being made in semiconductor manufacturing, innovations and in private sector space missions. Moreover, Mr. Modi underscored the progress achieved in the last 12 years in the field of education by establishing new universities and

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार

0: सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117.85 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि जांच की जा रही है कि विदेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान जहाजों पर हमले बंद कर वार्ता शुरू नहीं करता है तो अमेरिका हमलों में तेजी लाएगा। कुवैत ने कहा है कि उसने महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने वाले हमलावर ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक और व्यावसायिक जहाज पर हमला हुआ है। इस बीच तनाव बढ़ने के चलते अमेरिका के विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में मौजूद अमरीकी नागरिकों के लिए नई सुरक्षा सलाह जारी की है। इसमें कहा गया है कि वे ये इलाके छोड़ने पर विचार करें। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया को आसान और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से ई भविष्य पेंशन स्वीकृति तथा ट्रैकिंग प्रणाली शुरू की है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के डिजिटल शासन के दृष्टिकोण के अनुरूप शुरू की गई इस पहल के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC ने 25 पायलट विभागों के अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the area of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre Vivek Smarak in Mysuru yesterday. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekanand's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building. Mr. Modi further said the capabilities of our youth has transformed India into the second largest mobile phone market. New strides are being made in semiconductor manufacturing, innovations and in private sector space missions. Moreover, Mr. Modi underscored the progress achieved in the last 12 years in the field of education by establishing new universities and colleges including ITIs, IIMs, IITs, AIIMS and increasing medical seats as well. Delhi BJP yesterday lodged a complaint against leader of the opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, independent MP Rajesh Ranjan alias Pappu Yadav, SP MP Avdesh

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री

0: ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खोर्धा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान जहाजों पर हमले बंद कर वार्ता शुरू नहीं करता है तो अमेरिका हमलों में तेजी लाएगा। कुवैत ने कहा है कि उसने महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने वाले हमलावर ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक और व्यावसायिक जहाज पर हमला हुआ है। इस बीच तनाव बढ़ने के चलते अमेरिका के विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी नागरिकों के लिए नई सुरक्षा सलाह जारी की है। इसमें कहा गया है कि वे ये इलाके को छोड़ने पर विचार करें। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुधंती चौधरी, सचिन सिवाज और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहेन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। एथलेटिक्स में 5000 मीटर में भारतीय धावक गुलवीर ने कांस्य पदक जीता। भारत ने पैरा एथलेटिक्स में भी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की और पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में सोमन राणा ने स्वर्ण पदक जीता। हालांकि शुभम जुएल को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the area of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Center Vivek Smarak in Mysuru yesterday. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekanand's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building. Mr. Modi further said the capabilities of our youth has transformed India into the second largest mobile phone market. New strides are being made in semiconductor manufacturing, innovations and in private sector space missions. Moreover, Mr. Modi underscored the progress achieved in the last 12 years in the field of education by establishing new universities and colleges, including ITIs, IIMs, IITs, AIMS, and increasing medical seats as well. Union Home Minister Amit Shah has approved the advance release of 2,117.85 crore rupees from the central share of the State Disaster Response Fund SDRF to support the states affected by floods during the ongoing southwest monsoon. Out of the 7 affected states, Himachal Pradesh, Odisha and Nagaland had earlier received the first installment of SDRF for the financial year 2026-27. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda yesterday reviewed the preparedness

0: நேர்கள் இதுவரை நெஞ்சம் மறப்பதில்லை கேட்டீர்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ரவி கபூர். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में

0: बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ईरान जहाजों पर हमले बंद कर वार्ता शुरू नहीं करता है तो अमेरिका हमलों में तेजी लाएगा। कुवैत ने कहा है कि उसने महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने वाले हमलावर ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक और व्यावसायिक जहाज पर हमला हुआ है। टेनिस में भारत के रामकुमार रामनाथन और विजय सुंदर प्रशांत ने आज बॉन ओपन 2026 में डबल्स का खिताब जीता। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में इंग्लैंड के स्कॉट डंकन और स्वीडन के एडम हेइनोनन की जोड़ी को हराया। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुधन्ति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोर गोहेन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने पैरा एथलेटिक्स में भी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की और पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में सोमन राणा ने स्वर्ण पदक जीता। हालांकि शुभम जुआल को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the area of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre Vivek Smarak in Mysuru yesterday. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekanand's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building. Mr. Modi further said the capabilities of our youth has transformed India into the second largest mobile phone market. A new strides are being made in semiconductor manufacturing, innovations and in private sector space missions. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda yesterday reviewed the preparedness for the National Eligibility Cum Entrance Test for Postgraduate NEET PG 2026 to ensure the smooth, secure, transparent and technology-enabled conduct of the examination. The exam is scheduled to be held on the 30th of this month. During the meeting, the Minister assessed the preparedness of the National Board of Examinations in Medical Sciences, technology partners and other stakeholders involved in conducting the examination. He was briefed on examination logistics, candidate facilitation measures, the security architecture and the technology-driven interventions introduced for NEET PG 2026. Maharashtra government has initiated an inquiry into the foreign funding received by the Cockroach Janata Party and certain other organizations. Minister of State for Home Pankaj Bhoyer said the investigation is examining how the funds were utilized, while the Enforcement Directorate is also conducting a parallel probe. He added that appropriate action will be taken if the funds are found to have been used for illegal activities. US President Donald Trump has threatened to intensify military action against Iran, warning that American strikes will continue until Tehran halts attacks on shipping and returns to negotiations. Kuwait said today that it intercepted and destroyed hostile drones targeting vital facilities, and another commercial vessel came under attack in the Strait of Hormuz. The escalating

0: अब तक आप सुन रहे थे डॉक्टर मृत्युंजय अगड़े का हिंदुस्तानी गायन। आपके साथ तबले पर पंडित रघुनाथ नाकोड़, हारमोनियम पर श्री डी कुमार दास साथ दे रहे थे।
1: यू आर लिसनिंग टू वोकल रिसाइटल बाय डॉक्टर मृत्युंजय अगड़ी। ही वॉज अकंपनीड ऑन तबला बाय पंडित रघुनाथ नाकोड, हारमोनियम बाय श्री डी कुमार दास।
2: நேர்கள் 100.1 எஃப்எம் கோல்டு வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் இனிய ராகம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். தொடர்ந்து பண்டிட் சிவகுமார் சர்மா அவர்களின் சாந்தூர் இசை இடம்பெறும்.

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत

0: चीन के बीच व्यापार फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ईरान जहाजों पर हमले बंद कर वार्ता शुरू नहीं करता है तो अमेरिका हमलों में तेजी लाएगा। कुवैत ने कहा है कि उसने महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने वाले हमलावर ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक और व्यावसायिक जहाज पर हमला हुआ है। सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2026 में मौजूदा चैंपियन भारत ग्रुप बी में मालदीव और पाकिस्तान के साथ मुकाबला करेगा। ये टूर्नामेंट इस साल 4 से 17 नवंबर तक ढाका में खेला जाएगा। भारत अपने खिताब को बचाने के लिए 5 नवंबर को मालदीव के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगा और फिर 11 नवंबर को पाकिस्तान का सामना करेगा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुधंती चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहेन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुष 60 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में नामीबिया के ट्राई गेन मॉर्निंग ज्वेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the area of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre Vivek Smarak in Mysuru yesterday. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekanand's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building. Mr. Modi further said the capabilities of our youth has transformed India into the second largest mobile phone market. New strides are being made in semiconductor manufacturing, innovations and in private sector space missions. Moreover, Mr. Modi underscored the progress achieved in the last 12 years in the field of education by establishing new universities and colleges including ITIs, IIMs, IITs, AIIMS and increasing medical seats as well. Union Minister for Health and Family Welfare, Jagat Prakash Nadda, yesterday reviewed the preparedness for the National Eligibility Cum Entrance Test for Postgraduate NEET PG 2026 to ensure the smooth, secure, transparent and technology-enabled conduct of the examination. The exam is scheduled to be held on the 30th of this month. Maharashtra government has initiated an inquiry into the foreign funding received by the Cockroach Janata Party and certain other organizations. Minister of State for Home Pankaj Bhoyer said the investigation is examining how the funds were utilized, while the Enforcement Directorate is also conducting a parallel probe. He added that appropriate action will be taken if the funds are found to have been used for illegal activities. US President Donald Trump has threatened to intensify military action against Iran, warning that American strikes will continue until Tehran halts attacks on shipping and returns to negotiations. Kuwait said today that it intercepted and destroyed hostile drones targeting vital facilities, and another commercial vessel came under attack in the Strait of Hormuz. Firefighters contained a massive wildfire in southwestern France today, allowing nearly 1,98,000 people to return home after one of the country's largest peacetime evacuations, even as new fires triggered fresh evacuations in southern France and Greece. India climbed to fourth place in the Commonwealth Games medal standings in Glasgow with a total of 39 medals, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze. The latest comes from 5,000 meter race where India's Gulveer Singh

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஃபர்ஹத் நாஸ். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। श्री मोदी ने ये भी कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से भाग लेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के जागरूकता संबंधी गतिविधियां चलाई जाएंगी। इनमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117.85 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने बैठक में परीक्षा को सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित तरीके से कराने के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज और अन्य संबंधित एजेंसियों की तैयारियों का जायजा लिया। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हित बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नीट पीजी 2026 के लिए कुल 2,73,183 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.5% से अधिक है। परीक्षा एक ही पाली में लगभग 340 शहरों और 1,300 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो जाएगा। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक